मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के

0: के घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, दिन है सोमवार और ये होता है समर्पित भगवान भोलेनाथ को। एक लोटा जल और बेलपत्र, यही भोलेनाथ को प्यारे हैं और इसी के मात्र से चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं। देवों के देव महादेव, आइए अब करते हैं इनकी स्तुति।

जटाओं से जिसकी बहती गंगा, माथे पर चंदा मुस्काता है, गले में सर्पों की माला और हाथ में डमडम डमरू बजता है। यहाँ श्रोताओं, शमशान की भस्म लगाकर जो बैरागी रूप धरे हैं, वो देवों के देव महादेव, जिनका रूप सबसे न्यारा और सबसे प्यारा है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोतो, मन की सच्ची शांति धन दौलत या दिखावे से कभी नहीं मिल सकती। जब इंसान परमात्मा के नाम में लीन होता है तभी उसे परम आनंद मिलता है। गुरुदेव की शिक्षाएं हमें लालच अहंकार और नफरत से दूर रहना तो सिखाती हैं, साथ ही वाहेगुरु का सिमरन करने से मन के सारे विकार और चिंताएं भी शांत हो जाती हैं।

जो कुछ हमारे नसीब में होता है ना श्रोताओं, वो उसकी मर्जी से हमें सही वक्त पर मिल ही जाता है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। जब हम सजदे में सिर झुकाते हैं तो दिल की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की इस आरती के साथ। दौड़ भाग भरी इस जिंदगी में जब भी थक जाता हूँ तो मैं महादेव की भक्ति में ही सुकून पाता हूँ। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण, चंदेश्री और महेंद्र। संगीत सतीश भाटिया का।

नखा जैसी राक्षसी कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें? तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।
1: कुदरत की रचना में मानव एक आदर्श और सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि उसके पास चिंतन शक्ति और विवेक शक्ति है। मानव जीवन ही अन्य सभी प्राणियों के लिए भी अनुकरणीय होता है। मानव जो कुछ सोच रहा है और जैसा सोच रहा है, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इन तरंगों का प्रभाव स्थूल प्रकृति पर, अन्य मानवों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यदि मानव समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो पशु भी अधिक हिंसक हो जाते हैं। मानव ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। मानव शांत और सुखी तो मानो पूरा संसार सुखी, यहां तक कि ऐसे में प्रकृति में शांति का साम्राज्य होता है और वो भी सुखदायी बन जाती है। मानव के विचारों का कितना महत्व है, इस सत्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को चलना है कि संतुलित सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही सफल है। मन साध है सब कुछ सद है। संतुलित जीवन एक अभ्यास है, साधना है। इसके सदते ही जीवन में खुशी, प्रफुल्लता और सच्चे आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सहज जीने की कला का आधार भी संतुलन में समाया है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य आनंद दीक्षा ग्रहण करते ही उग्र तपस्या में लीन हो गया। उसे तन की भी सुध नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि तन सूखकर कांटा हो गया। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम तो वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तो चलो एक राग तो बजाकर दिखाओ। आनंद बोले, पर ये कैसे बजेगी, इसके तो सभी तार ढीले हैं। बुद्ध बोले, तारों को कस दिया जाए तब बजा लेना। जब दोबारा वीणा आनंद के हाथों में आई तो उलझन में पड़ गए और बोले, अरे यदि वीणा को अब बजाया गया तो इसके सब तार टूट जाएंगे, क्योंकि इनमें तो बहुत अधिक तनाव है। बुद्ध ने कहा, आओ इसे ठीक करते हैं। तारों में तनाव संतुलित हुआ और वीणा पर धुन झंकृत हो गई। जब वादन समाप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध बोले, ये जीवन भी वीणा की तार की तरह है। जैसे वीणा की तार से धुन निकालने के लिए उसे मध्य में रखा जाता है, इसी प्रकार जीवन की वीणा से आनंद, प्रेम, सुख शांति के स्वर तभी झंकृत होते हैं जब वो मध्य में संतुलित हो। संतुलन का अर्थ बराबर बराबर नहीं, पर उतना जिस अनुपात में जो आवश्यक हो। जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में इसकी उपयोगिता है। हमारे मनोभावों को भी इस परिप्रेक्ष्य में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में भावुकता और व्यवहारिकता में संतुलन भी उतना ही वांछनीय है। इस भौतिक युग में वैज्ञानिक यांत्रिकता के प्रभाव से अछूता हमारा मन भी नहीं रहा है, इसलिए भूल करके भी क्षमा मांगना तो दूर, उसका पछतावा भी हम नहीं किया करते। व्यवहारिक बनो, यही आज की मांग है। भावुक होना आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं। भावुकता कमजोरी का पर्याय है, जो स्वयं को हास्यास्पद स्थिति तक पहुंचा सकती है, यदि समय पर सचेत रहकर संतुलित सोच के दायरे में रखकर मनन न किया जाए। जीवन की लहरों के उतार चढ़ाव का सही जायजा लेकर आगे बढ़ोगे तो न सपने टूटने का दर्द होगा और न ही अपेक्षाओं के अनुरूप न पाने की तड़प। सब कुछ हमारे हाथ में है।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। काव्यधारा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं अनिल वाजपेयी का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 27 फरवरी चंद्रशेखर आजाद हमारे महानायक की पुण्यतिथि है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो हमारे महानायक हैं। जब मृत्यु सामने थी तब भी वो कविता पढ़ रहे थे, गीत पढ़ रहे थे, गजल पढ़ रहे थे। गोलियां फिरंगियों की ओर से भी चल रही थी, गोली आजाद की ओर से भी चल रही थी। अंत में पिस्टल कनपट्टी पे लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद और दो पंक्तियां पढ़ करके शहीद होते हैं। कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिजली कड़कती थी, लहरें चूमे आसमान, गर्जना से शत्रु की रूह कांप जाती थी, और चलता था धरती पे मस्त गज वाली चाल, बदले आजादी रक्त बात हर्षाती थी। कि बिजली कड़कती थी, लहरें चूमे आसमान, गर्जना से शत्रु की रूह कांप जाती थी, और चलता था धरती पे मस्त गज वाली चाल, रहूंगा आजाद सदा बात हर्षाती थी। शूरवीर तेज पूर्ण क्रांतिकारी भारतीय, अनुराग वसुधा पे प्रेम गीत गाती थी, और गर्जे जब सिंह भाती उखड़े तब विशाल वृक्ष, स्वतंत्रता भी बादलों को चीर चली आती थी। एक छंद आप तक निवेदित करता हूं कि गंधमक रनले के चलती समीर यहां, कि गंधमक रनले के चलती समीर यहां, कल कल गंगा के निनाद वाला देश है, प्रेम गीत गूंजते हैं सागरों में मंदिरों में, नानक कबीर सूर मीरा वाला देश है। तो झूल गए फांसियों पे, कि झूल गए फांसियों पे हंस हंस झूम झूम, बिस्मिल और अशफाक वाला देश है, गोली मारी कनपटी पे गाते बंदे मातरम, शेर दिल शेखर आजाद वाला देश है, शेर दिल शेखर आजाद वाला देश है। अब चलते हैं हम होली के अवसर पर, थोड़ा सा कुछ हास्य हो जाए। होली के इस रंग उत्सव में, जीवन के इस खुशमय पल में, मन के अंतर द्वंद मिटाकर, मन की हर पीड़ा को मिटाकर, आओ हम थोड़ा हंस ले, जीवन में थोड़ा रंग भर ले। कुछ हास्य मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप लोग खिलखिलाएं, मुस्कुराएं। कुछ इसी सोच के साथ मैं प्रस्तुत करता हूं कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए, कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए, इनमें से कौन छाता चलेगा 50 साल, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, कि मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई छाता आप लेके जाइए, हर एक छाता पूरे चलेगा 50 साल, केवल इन्हें धूप और पानी से बचाइए। और प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठे हुए थे चांदी रात, और उनमें आपस में बात होती है, उसमें से हास्य निकलता है कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देखो, प्रेमी बोला प्रेमिका से कविता सुनाइए, कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देखो, प्रेमी बोला प्रेमिका से कविता सुनाइए, तेरी प्यारी आंखों में जी दुनिया को देखता हूं, दिल मेरा कहता है इनमें समाइए। तो देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, कि देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, प्रेमिका को छोड़ मिस्टर मेरे पास आई, खोया हुआ गधा जो मैं ढूंढ रहा कल से हूं, प्रेमिका की आंख में जी देख बतलाइए, प्रेमिका की आंख में जी देख बतलाइए। और एक छंद में आप तक पहुंचाता हूं, चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, कि चंबल का डाकू देख बोले एक नेताजी, देश का प्रधान मैं तो तुम ही को बनाऊंगा, घने बीहड़ों को छोड़ आओ तुम मेरे पास, तुमको टिकट में

पास तुमको टिकट मैं यकीन से दिलाऊंगा। तो नेताजी से बोला वह डाकुओं का सरदार, कि नेताजी से बोला वह डाकुओं का सरदार, मेरे हैं उसूल ना मैं उनको गिराऊंगा। राजनीति इतनी हुई है बदनाम, आज लड़के चुनाव ना मैं छवि को गिराऊंगा, लड़के चुनाव ना मैं छवि को गिराऊंगा। एक नेता यमराज के पास पहुंचते हैं, तो वहां से एक हास्य होता है, वो सुनिएगा आप लोग। कि नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नरक ना दिखाइए। नेता एक मर कर गए यमराज पास, बोले सरकार मुझे नरक ना दिखाइए। 10 पैसे दान में दिए थे मैंने एक बार, इसलिए आप मुझे स्वर्ग भिजवाइए। तो गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहां, कि गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहां, चित्रगुप्त आप जरा मेरे पास आइए। गदा एक हाथ लिए बोले यमराज वहां, चित्रगुप्त आप जरा मेरे पास आइए। 10 पैसे इनके तुरंत आप दीजिएगा, एक धक्का मार इन्हें नरक भिजवाइए। एक हमारे मित्र हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हास्य उनके साथ मैं करता रहता हूं, और वो भी पूरी तरह से मस्ती लेते हैं। दरोगा जी ने उनको पकड़ लिया था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, वो सुनिएगा। कि सोना नहीं चांदी नहीं रुपया और पैसा नहीं, खाता हूं मैं रोटी और दाल को दरोगा जी। देखो भाई कितने जी लोग हैं विचित्र, आज सोचते उड़ाऊं पुए माल को दरोगा जी। तो काजू और बादाम के होते नहीं दर्शन, ये काजू और बादाम के होते नहीं दर्शन, केवल मोटे और फूले गाल हैं दरोगा जी। और देश में बची हुई इतनी ईमानदारी, उतने ही सिर पर बाल हैं दरोगा जी। और एक और मैं आप तक बात पहुंचाता हूं कि ये बिल्कुल सच घटना है, कि दो दो पैक डाले हुए जा रहे थे हम लोग, इसी बीच डिब्बे में आ गए दीवान जी। ट्रेन की बात है, कि दो दो पैक डाले हुए जा रहे थे हम लोग, इसी बीच डिब्बे में आ गए दीवान जी। एक बोला हम में से दल का अध्यक्ष हूं, दूजा बोला कविता को सुनिए दीवान जी। तो सुन के दीवान बोले निर्दली आदमी हूं, सुन के दीवान बोले निर्दली आदमी हूं, कविता में रुचि नहीं रखते दीवान जी। और ट्रेन में पैग पीना सख्त अपराध, यहाँ डिब्बे के बाहर इसे पिएंगे दीवान जी, डिब्बे के बाहर इसे पिएंगे दीवान जी। 4 पंक्तियां चोर और 4 पंक्तियां थानेदार की। चोर ने बड़ा क्लासिकल जवाब दिया थानेदार को, उसमें से हास्य हुआ, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। कि बेड़ियों में चोर देख बोला एक थानेदार, बड़ी मुश्किल से तू पकड़ में आया है, तन कर चलना है सख्त अपराध, यहाँ लगता है ससुराल पहली बार आया है। तो चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है। चोर बोला पूरी बात सुनिएगा थानेदार, बंदा यह ससुराल कई बार आया है, आया जिस बार यहां मिलता था कोई और, पहली बार चोर को तू साला मिल पाया है, पहली बार चोर को तू साला मिल पाया है। एक साल बाद बोला मालिक मकान वाला, एक साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। एक साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह भाई साहब, कि बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए। कि बढ़िया सा ऑफर देख बोले वह भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए, ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए, आधी भूले हम आधी आप भूल जाइए। बच्चों के लिए पापा जी बहुत सुंदर सुंदर से गिफ्ट लेकर के आए, कि एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, कि एक दिन मम्मी बोली मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइज दिलवाएंगे।

0: प्यारे बच्चे सुनो, जो भी होगा आज्ञाकारी प्राइस दिलवाएंगे, प्यारी प्यारी चीजों को मैं लाई हूँ बाजार से, जो भी जीता शर्त केवल उन्हें मिल पाएंगे। कि सुनकर सारी बात बच्चों ने जवाब दिया, शर्त है कठिन कैसे हम जीत पाएंगे, बढ़कर आज्ञाकारी पापा जी से होगा कौन, सारे ही प्राइज वे अकेले जीत जाएंगे, सारे ही प्राइज वे अकेले जीत जाएंगे।
1: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे अनिल वाजपेयी का ये पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननम् अपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलियल दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेश मंत्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन

0: रसुवा नुवाकोट धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानाम् अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88+100 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27+200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणां 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतन वृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तर क्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतु विभागेन बालेश्वर खेजर मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी

0: 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। आईसीसी बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता आइए अब सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित जानकारी। विषय है हृदय रोग, कारण, लक्षण और बचाव।
2: हृदय रोग आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है और वाकई में ये जानलेवा बीमारी है, तो इन सबका इंसिडेंस बढ़ रहा है और बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो सबसे चिंता का विषय है वो ये है कि ये यंग एज में आ रही है। जो पहले कहते थे कि ये 60 साल के बाद होती है लेडीज में, 65 साल के बाद होती है, अब वो जेंट्स में बिटवीन द इयर्स ऑफ 20-40 इयर्स में देखी जा रही है। तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है और इसके लक्षण पहचानना, इसका प्रॉपर इलाज कराना हर मरीज के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये जानलेवा भी हो सकते है। बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में भी देखा जा सकता है, वेरी रेयरली। अगर उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो तो उनमें भी ऐसा हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वो है जिसको लेके बच्चा पैदा हुआ है, जन्मजात जो लेके पैदा हुआ है, उसके हार्ट की स्ट्रक्चर में कुछ बर्थ के टाइम पे कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि उसको प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट डिजीज होने के लिए। लेकिन अब जो इंसिडेंस बढ़ रहा है वो यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। यंग पॉपुलेशन मेरा कहने का मतलब है बिटवीन 25-40 ईयर्स ऑफ एज। लक्षण हार्ट के, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां जिनके लक्षण होते ही नहीं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ये एक साइलेंट किलर माना जाता है। इसका कोई भी लक्षण नहीं होता। अगर आप रेगुलर चेकअप ना कराएं अपना तो आपको सालों तक पता नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है, और बाद में पता किस तरह चलेगा कि या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या लखवा हो जाएगा या किडनी की परेशानी हो जाएगी, तो पता चलेगा। जो हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम है वो इस तरह पता चलती है लोगों को शुरुआत में कि चलने पे सांस फूलना, चलने पे सीने में दर्द होना, चलने पे या तो घबराहट सी लगना, घुटन सी लगना, ये नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग इस तरह होती है। लेकिन किसी किसी में बहुत दर्दनाक स्टार्टिंग हो सकती है, उसको बैठे बैठे सीने में दर्द, पसीना आना, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सब चीजें हो सकती हैं। अन्य रोगों में भी ऐसा हो सकता है। जो लोग जैसे कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो बीड़ी वगैरह का सेवन करते हैं, उनमें भी चलने पर सांस फूलना हो सकता है, उनमें भी ये लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के लक्षण हो आप उसकी जांच कराएं प्रॉपर, जैसे कि पता चल सके कि किस कारण से हो रहे हैं और उसका प्रॉपर इलाज मिल सके। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन यंग इज स्मोकिंग, क्योंकि आजकल आप देखें तो बच्चों में एक क्रेज सा हो गया है कि हम शायद शो ऑफ करने के लिए या उनकी शायद स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं जिसको रिलीव करने के लिए वो लोग इस तरह की गलत आदतों में पड़ते जाते हैं और वहां पे स्मोकिंग और स्मोक करते हैं। स्मोकिंग का सबसे बुरा असर एक तो खुद पे भी और आप पे जो साथ बैठा है उस पे भी, दोनों पे बुरा असर होता है। चाहे आप एक्टिवली स्मोक कर रहे हो, जैसे खुद आप पी रहे हो, या आपके बगल में जो बैठा हो जो कि स्मोक ना कर रहा हो लेकिन तब भी वो आपका जो धुआं है उसको इनहेल करे, उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उसके भी बुरे असर देखे जाते हैं। स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ट की नाड़ियों या शरीर की सारी नाड़ियों को उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेमेशन माने सूजन, जैसे आपको कहीं चोट लगती है आपको सूजन आ जाती है। जब आप स्मोक करते हैं तो वो धुआं बॉडी में जाता है, वो ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड में मिक्स होके जो शरीर की नाड़ियां हैं उनसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वहां पे इन्फ्लेमेशन या सूजन कॉज करता है और यही सूजन आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनती है। लेकिन और भी कॉजेज हैं इसके, जैसे कि हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारे खान पीन का तरीका जो कि अब बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। अब हम फास्ट फूड पे ज्यादा रिलाई करते हैं, पैक्ड फूड पे ज्यादा रिलाई करते हैं, फल फ्रूट्स या सब्जियां खाने का हमारे पास टाइम नहीं है, सैलड्स वगैरह हम अपनी नॉर्मल डाइट में नहीं लेते हैं, ऊपर से हमारा ना सोने का कोई नियम है ना हमारा व्यायाम करने का कोई नियम है, लाइफ सबकी स्ट्रेसफुल होती जा रही है, तो ये

0: चीजें हैं जो कल्मिनेट करती हैं आपको हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करती हैं। अगर आपको आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है, जैसे कि आपके फादर, आपके मदर, आपके चाचा, ताऊ, इन सब में से किसी को हार्ट डिजीज है अगर, या आपके भाई बहन को किसी को, तो आप भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं हार्ट डिजीज होने के। तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, आपको बहुत ईटिंग हैबिट्स अपनी अच्छी रखनी पड़ेंगी और हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। उच्च रक्तचाप जो होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक साइलेंट किलर होता है। आदमी को इसका पता ही नहीं होता क्योंकि बॉडी अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है एक हाई ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन अडेप्टेशन वो कैसे होता है, आपकी नाड़ियां जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं उस ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने के लिए। तो चाहे वो हार्ट की नाड़ियां हों, चाहे वो ब्रेन की नाड़ियां हों, चाहे वो किडनी की नाड़ियां हों, वो सारी सख्त हो जाती हैं, चाहे पैरों की नाड़ियां हों। तो धीरे धीरे इन सब में खराबी आने लगती है। ब्रेन में जैसे स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी में किडनी खराब हो सकती है और आपको आगे डायलिसिस जरूरत पड़ सकती है, आपको पैरों में गैंग्रीन वगैरह वो सब हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को जल्दी पहचानना, रेगुलर चेकअप कराना, रेगुलर दवाई लेना और रेगुलर उसके लिए परहेज रखना, जैसे कि नमक का परहेज है वो रखना, पानी ज्यादा पीना, व्यायाम रेगुलरली करना, अपनी दवाई टाइम पे लेना, स्मोकिंग ना करना, एक बैलेंस डाइट लेना, ये सब चीजें उसमें शामिल है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जानकारी, विषय था हृदय रोग, कारण, लक्षण और बचाव। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। किसान भाई सुने खेती की बातें। इससे कार्यक्रम में श्रोताओं, आज जानकारी का विषय है पौधों में सूक्ष्म तत्वों की उपयोगिता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं पौधों में सूक्ष्म तत्वों की उपयोगिता। किसान भाइयों हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ फसल उत्पादन करते हैं। किसान भाइयों पौधों की अच्छी वृद्धि और भरपूर उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को, हमारी फसल को जरूरत होती है जल की, प्रकाश की, वायु की और प्रमुख पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों की। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म तत्वों की। तो भैया सूक्ष्म तत्व वे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी होने पर पौधों की वृद्धि, विकास और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो भैया लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल आदि तत्व हैं। किसान भाइयों लोहा पौधों में क्लोरोफिल निर्माण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसकी कमी से नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा जस्ता और जस्ते की बात करें जिंक पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के निर्माण और एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। किसान भाइयों इसी तरह से बात करें मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, भाई कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो बोरोन की भी प्रतिपूर्ति अपनी फसलों में करते हैं, तो कोशिका विभाजन, परागण, फूल और फल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बोरोन निभाता है। इसकी कमी से फूल और फल बनने में समस्या आती है। किसान भाइयों पौधों की नई बढ़वार प्रभावित होती है। साथ ही साथ यदि बात करें हम क्लोरीन की तो पौधों में जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। साथ ही कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि भैया सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग अपनी फसलों में नहीं करते हैं, वो मुख्य पोषक तत्वों में चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, इन्हीं पोषक तत्वों से अपनी फसल में प्रतिपूर्ति करते रहते हैं। क्योंकि भाई हमारे किसान भाई अपने खेतों में गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करते हैं और भाई हम तो अपने किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जो हमारे भाई गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो भैया अपनी फसल बुआई से पहले अपने खेतों में गोबर की अच्छी सड़ी खाद का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ यदि गोबर की सड़ी खाद आपके पास नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, साथ ही कंपोस्ट बना सकते हैं जो कि आप बचे कुचे जो हमारे अवशेष होते हैं उनसे बनाकर अपने खेत में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी FYM या गोबर की सड़ी खाद होती है वो भैया बहुत ही पोषकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हमारे खेत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाती है जो कि आज हमारे खेतों में बहुत कमी है। किसान भाइयों वैसे तो हमें चाहिए कि अपनी फसलों में उर्वरकों की प्रतिपूर्ति करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच हमें करा लेनी चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। भाई हमारे खेत में पोषक तत्व की कमी है मान लो भैया जिंक की और हम भैया डाल रहे हैं नाइट्रोजन और भाई नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है, तो भाई वो हमारी जो लागत है, हमारे किसान भाइयों की जो जेब है उस पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो भैया आप जो है अपने खेत की मिट्टी की जांच करा कर ही पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति करें। किसान भाइयों, सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में तो हमारी फसल को होती ही है, इसलिए भैया इनका संतुलित उपयोग हमारे किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। इनकी कमी की प्रतिपूर्ति जैविक खाद, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों तथा आवश्यकता के अनुसार पत्तियों पर छिड़काव द्वारा भी की जा सकती है। किसान भाइयों, हमें बुआई के साथ साथ भैया माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बाजार में भी अच्छे अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट अपनी फसल में आवश्यक रूप से प्रतिपूर्ति करें। समय यदि हमारे खेत में देखें हम तो धान की फसल खड़ी है, भाई धान की फसल में जिंक पोषक तत्व के कारण एक रोग लगता है खैरा। भाई खैरा रोग जिंक की कमी के कारण आता है, क्योंकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और हमारी फसल में ये रोग बहुत ही क्षति पहुंचाता है। तो भाई इस तरह से हमारे अच्छा उत्पादन लेने के लिए समय समय पर आवश्यक पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति करें, तो भाई हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, खेती में मिट्टी की जांच के आधार पर ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेती की बातें। जानकारी का विषय था पौधों में सूक्ष्म तत्वों की उपयोगिता। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत होगा रात 10:00 और 10:30 पर होगा आपकी फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर आज हम आपको सुनवाएंगे प्रतिभा सिंह के गाए भजन। छाया गीत ये कार्यक्रम होगा शाम 6:55 पर और 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शुभा माहेश्वरी की वार्ता, जिसका विषय होगा नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या नया संवाद।

0: कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आज आप सुनेंगे मूंगफली में समसामयिक कार्य विषय पर डॉक्टर सौरभ दुबे, कृषि वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से अंकित कुमार की बातचीत। समय याद रखिएगा, कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम होगा गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और रहस्य सीरीज के साथ आप सुनेंगे लव स्टोरी। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शाम 5:00 आज जानकारी के विषय होंगे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी ई नाम। नई फिल्मों से फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर और 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुरदास मान के गाए पंजाबी लोकगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे पंडित रवि शंकर का सितार पर बजाय राग मधुवंती। दिशा सक्सेना और मृदुला निगम के गाए रुहेलखंडी लोकगीत आप सुनेंगे धरती गाती है कार्यक्रम में सवेरे 9:25 पर। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर दिया गया। यह विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह 35वां वैश्विक सम्मान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और वैश्विक मंच पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को एक और मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि

0: योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति सेट के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश की हजारों बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन का आग्रह भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा तय की है।
2: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
0: अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,30,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न

0: जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य भर में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। वहां गंगा नदी चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में 5 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे सभी 4 लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। श्रोताओं, आंखें अनमोल हैं। जी हां श्रोताओं, ईश्वर का दिया आंखें एक अनमोल उपहार हैं, जिसके बिना जीवन के सारे रंग और सुंदरता अंधकार में विलीन हो जाते हैं। जी हां श्रोताओं, हम मना रहे हैं जीवन का अमूल्य वरदान नेत्रहीन को नेत्रदान, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। और श्रोताओं, इसी अंधकार को मिटाकर किसी के जीवन में प्रकाश भरने के महाअभियान को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कहा जाता है। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ये 15 दिवसीय राष्ट्रीय पखवाड़ा पूरे देश में बेहद उत्साह और जिम्मेदारी के साथ मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य कारण और उद्देश्य समाज में फैली उन भ्रांतियों, अंधविश्वासों और अज्ञानता को दूर करना है श्रोताओं, जो लोगों को इस पुण्य कार्य करने को रोक

ताकि कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित लाखों नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए मरने के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी कॉर्निया खराब होने के कारण वे देख नहीं पाते और उनके जीवन का ये अंधकार एक संवेदनशील इंसान के नेत्रदान के संकल्प से ही मिट सकता है। नेत्रदान को महादान कहा गया है श्रोताओं, क्योंकि एक मृत व्यक्ति द्वारा किए गए नेत्रदान से दो अलग अलग नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन को रोशन किया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार किसी भी उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, यहां तक कि चश्मा लगाने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति भी आसानी से नेत्रदान कर सकता है, बशर्ते मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम द्वारा कॉर्निया को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इस प्रक्रिया में मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता है, जिससे चेहरे पर कोई भी दाग या विकृति नहीं आती और अंतिम संस्कार की रस्मों में भी कोई बाधा नहीं आती है। इसके सामाजिक फायदे भी अतुलनीय हैं श्रोताओं। जब एक दृष्टिहीन व्यक्ति को रोशनी मिलती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर बनता है बल्कि समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी प्रगति में योगदान भी देता है। ये पखवाड़ा हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवित रहने और मानवता की सेवा करने का इससे पवित्र माध्यम कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प लें और अपने परिजनों को इससे अवगत कराएं और अज्ञानता के तिमिर को मिटाकर इस अमूल्य वरदान से किसी के अंधेरे संसार को रोशनी की सौगात दें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, आज के समय में हम सबके हाथों में स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है। जी हाँ श्रोताओं, और भाई अब तो ये कहें डिजिटल के साथ साथ में एआई का जमाना है, और आज के इस डिजिटल युग में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जो हमें दुनिया भर से जोड़ती है। परंतु इनके असावधानी के इस्तेमाल से साइबर अपराध, डेटा चोरी, ब्लैकमेलिंग और मानसिक तनाव जैसे गंभीर खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन खतरों से सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण सावधानी श्रोताओं ये है कि हमें अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा प्राइवेट या फ्रेंड पर रखें, और मजबूत पासवर्ड के साथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से चालू करें, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रोफाइल को हैक ना कर सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग यानी कि अत्यधिक जानकारी, निजी जानकारी अगर कहें, जैसे श्रोताओं घर का पता, फ़ोन नंबर, लाइव लोकेशन, बैंक विवरण या बच्चों की फ़ोटो पोस्ट करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि अपराधी या चोर इस डेटा का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी या फोटो मॉर्फिंग जैसे अपराधों के लिए कर सकते हैं। वर्चुअल दुनिया में अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बिना पहचान किए किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें और ना ही उस पर भरोसा करके अपनी निजी बातें साझा करें। इंटरनेट पर तैरने वाले लुभावने ऑफर्स, लॉटरी के झांसों और संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई फाइल्स को डाउनलोड करें, क्योंकि ये आपके डिवाइस में मालवेयर भेजकर आपकी पूरी डिजिटल पहचान को खतरे में डाल सकते हैं। इन तकनीकी सावधानियों के साथ साथ अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, उतना ही आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य का भी है। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी असल जिंदगी से उसकी तुलना कभी ना करें। रील देखने की लत से बचें और दिन में कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स अपनाकर स्क्रीन टाइम सीमित करें। सोशल मीडिया बेहतरीन और शक्तिशाली उपकरण है, बशर्ते हम इसके गुलाम बनने के बजाय पूरी जागरूकता, सजगता और जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हमारी सतर्कता ही हमारी सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब बात करते हैं 24/7 मुफ्त, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सहायता टेली मानस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते मानसिक तनाव और अवसाद के दौर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सही समय पर मदद मिलना बेहद जरूरी हो गया है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक बेहतरीन और क्रांतिकारी पहल है टेली मानस। ये एक ऐसी अनूठी सेवा है श्रोताओं, जो देश के हर नागरिक को साल के 365 दिन और 24 घंटे पूरी तरह से मुफ्त, तुरंत और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता प्रदान करती है। चाहे आप किसी भी राज्य में हो, ग्रामीण इलाके में हो या शहर में, एक साधारण फोन कॉल के जरिए आप सीधे योग्य मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं और मनोरोग विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। इस सेवा की सबसे बड़ी खूबी इसकी गोपनीयता है। यहाँ बात करने वाले हर व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाती है, जिससे लोग बिना किसी हिचकिचाहट या सामाजिक डर के अपने मन की बात तनाव, एंजाइटी या किसी भी अन्य मानसिक समस्या को साझा कर सकते हैं। यह न केवल डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगाने के खर्च और समय को बचाता है, बल्कि सुदूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ सहायता पहुंचाता है। जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो, टेलीमानस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक को मिटाना और समाज के हर वर्ग तक, विशेषकर युवाओं और संकट में घिरे लोगों तक एक सुरक्षित डिजिटल माध्यम से तुरंत राहत पहुंचाना है। डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवाओं के इस अनूठे संगम ने मानसिक रूप से एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, जहां हर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है और मदद केवल एक कॉल की दूरी पर है। टेलीमानस के नंबर शॉर्ट कोड नंबर 14416 और टोल फ्री नंबर 1800-891-4416 या 1800-891-4416 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ये नंबर पूरी तरह टोल फ्री हैं और ये सहायता 24 घंटे उपलब्ध है।

श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आपको बताते हैं कि 31 अगस्त को देश दुनिया में क्या हुआ। चलिए श्रोताओं, अब आपको अवगत कराते हैं 31 अगस्त के घटे कुछ घटनाओं के बारे में। तो हम आपको बता दें श्रोताओं, अमेरिका में पहली बार 31 अगस्त 1881 में टेनिस चैंपियनशिप खेली गई थी। 31 अगस्त 1968 में भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था और 1983 में भारत के उपग्रह INSAT-1B को अमेरिका ने अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया था। 1997 में 31 अगस्त को ही ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 2009 में भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप जोशी सहित एशिया की 6 हस्तियों को वर्ष 2009 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में 31 अगस्त को ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने दोनों देशों की राजनीतिक और कानूनी प्रणालियों को विलय करने के लिए एकीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1956 में आज ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को आधिकारिक मंजूरी दी थी। भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के प्रशासनिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ये ऐतिहासिक कानून बनाया गया था। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनका आज जन्मदिन है। तो श्रोता, हम आपको बताएं कि शिवाजी सावंत का जन्म 31 अगस्त 1940 में वर्तमान महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। मात्र 27 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला उपन्यास मृत्युंजय लिखा, जो महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित था। इस कालजयी रचना ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रियता और पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्ण पर आधारित छावा और युगंधर जैसे बेहतरीन उपन्यास लिखे। उनकी लेखन शैली पात्रों की भावनात्मक गहराई और गंभीर चिंतन के लिए जानी जाती है। उन्हें 1994 में भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य सरकार समेत कई सम्मान मिले और 18 सितंबर 2002 में गोवा में उनका निधन हुआ। 31 अगस्त 1963 में ऋतुपर्ण घोष, बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता का जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख फिल्में थी हिरेर आंगटी, रेनकोट, द लास्ट लीपर, सनग्लास और चित्रांगदा। उन्होंने हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर फिल्म चौखेर बाली 2003 में बनाई थी। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। 31 अगस्त 1871 को जन्म हुआ था सैयद हसन इमाम का। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए कई योजनाओं को बढ़ावा दिया। इसके अलावा इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के इस्तेमाल के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाए थे। अब बात उन महान व्यक्तियों की जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनमें थे 2020 को निधन हुआ था भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। और पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। और श्रोताओं, अब पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों के बारे में। चलिए श्रोताओं, बताते हैं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों के बारे में। तो हम आपको बताते हैं, दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कि नेपाल में भोटे कोशी नदी का जल स्तर फिर से बढ़ा, जल प्रलय में अब तक 768 लोगों की मौत, 2500 की तलाश जारी। भारत को उज्बेकिस्तान करेगा यूरेनियम की आपूर्ति। जी हां श्रोताओं, दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कि दोनों देशों के संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा, रक्षा क्षेत्र में सीधा सहयोग, मिलकर हथियारों का उत्पादन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च सम्मान ओलिये दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। दैनिक जागरण लिखता है कि भारत में अगले साल मार्च से एक देश एक समय होगा। भारत ने एक देश एक समय की ओर कदम बढ़ा दिए और केंद्र सरकार ने भारतीय मानक समय को अनिवार्य करने के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। दैनिक जागरण ही लिखता है कि
18,600 फीट की ऊंचाई पर खड़ी ढलान पर दिखाया दमखम। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में 18,600 फीट की ऊंचाई पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। 7 साल के भारतवंशी जिव्यान ने पास की GCSE परीक्षा। गणित में बाल प्रतिभा का लोहा 16 साल के बच्चों वाली परीक्षा उत्तीर्ण की। ब्रिटेन में 7 साल के भारतवंशी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए समय से करीब 1 दशक पहले गणित की कठिन परीक्षा पास कर ली। और श्रोताओं, अब कुछ खबरें खेल जगत से। तो दैनिक जागरण लिखता है श्रोताओं कि रिंकू ने संभाली मध्य क्षेत्र की लड़खड़ाती पारी। सेमीफाइनल के पहले दिन मध्य क्षेत्र ने पूर्व क्षेत्र टीम के विरुद्ध सभी विकेट खोकर बनाए 266 रन। श्रीलंका में नहीं होगी महिला चैंपियंस ट्रॉफी। जी हां श्रोताओं, ICC ने श्रीलंका से पहली बार होने वाली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार छीन लिया। नए मेजबान देश को लेकर फैसला ICC की अगली बैठक में लिया जाएगा। आगे दैनिक जागरण लिखता है कि शेफाली की मदद से भारत ने बनाया चुनौतीपूर्ण स्कोर। महिला एशिया कप में शेफाली वर्मा ने आक्रामक पारी खेली, लेकिन थाईलैंड की स्पिनरों ने भारत की पारी को अचानक लड़खड़ा दिया। भारत ने अपनी पारी में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में मात्र 65 रन पर ऑल आउट हो गई और जवाब में भारत ने ये मैच 94 रन से जीत लिया। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियां, और अब ये गीत आपके लिए।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है, जनधन बैंक खाता क्या मिला, मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडुबू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को

0: आन संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा

0: स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3401-0111-3144-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बिश्केक ऑन अ टू डे विजिट टू किर्गिस्तान टू अटेंड एससीओ समिट एंड मीट सेवरल एससीओ लीडर्स ऑन द साइडलाइंस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: विज्ञापन से पहले श्रोताओं, आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था अनुरोध, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म आंसू बन गए फूल से। गीत के बोल हैं गोविंद मुनिस और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चंदन का एहसास।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, बोल हैं इंदिवर की। आवाजें किशोर कुमार और उषा खन्ना की है, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पारस मणि, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत श्रोता हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फारूक कैसर के बोल हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

पराया धन इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत के बोल थे आनंद बख्शी और संगीत था आरडी बर्मन का। इसी के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 हुए हैं। अब आप जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से प्रसारित की जाएगी।

0: जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: वाराणसी में बीते दिनों भारत आए 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल में जापान की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ शामिल रहे। वाराणसी पहुंचने पर शहर के प्रवेश द्वार पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने जापानी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाराणसी में जापानी प्रतिनिधि मंडल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। इसके बाद दल ने नमो घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखा और काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। दौरे को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पर्यटन निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट सोसाइटी के महासचिव के सीमु थोरे ने बताया कि
3: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह में बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट स्टेशन हर तरफ का विकास हो रहा है। भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा विश्व में।
2: वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI के 56वें वार्षिक समारोह के अंतिम दिन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से जुटे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसर में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में किए गए निवेश, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास, करों में कमी और GST में राहत से इस क्षेत्र की संभावनाओं का और विस्तार हुआ है। सरकार की नीतियां और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण एनेबलर्स हैं, लेकिन इन अवसरों को जमीन पर उतारने में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समारोह में देश भर से होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य उद्योग से जुड़े व्यवसायी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की चुनौतियों, बदलती उपभोक्ता मांग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की गई। काशी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 22 से 24 अगस्त तक आयोजित ओडिशा पर्व में ओडिशा की संस्कृति, कला, खान पान, हस्तशिल्प और पर्यटन की जानकारी देते हुए उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिडा ने कहा कि
4: इन्वेस्टमेंट को उड़ीसा लाने के लिए, जो हॉस्पिटल सेक्टर को उड़ीसा बुलाने के लिए हमने उड़ीसा पर्व का आयोजन किया। हमारी कुजिन का, शोकेस हैंडलूम का, हैंडलर हैंडीक्राफ्ट का और हमारी डायस्पोरा जो हमारी उड़ीसा की ताकत है, उनसे मिलके बातचीत करने के लिए भी हम आए। वो सब अच्छे से संभव होगा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से।
2: भारत सरकार के भारत पर्यटन वाराणसी कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से स्थानीय होटल में होम स्टे एवं ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए अर्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटक यात्रा के प्रत्येक पहलू, बुनियादी ढांचे एवं पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता, आतिथ्य, सेवा वितरण, डिजिटल सहभागिता, सुरक्षा तथा समग्र पर्यटन अनुभव को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। श्री भुवनेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार की क्षमता निर्माण संबंधी पहल पर्यटन उद्यमों को अधिक व्यावसायिक कार्य प्रणालियाँ अपनाने, सेवा मानकों में सुधार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने तथा पर्यटकों की बदलती आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम बनाएगी। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि स्थानीय पर्यटन हितधारक वाराणसी के पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी को और अधिक टूरिस्ट फ्रेंडली शहर बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने होम स्टे एंड B&B संचालकों से पर्यटकों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता, धैर्य और सहयोग की भावना रखने की अपील की। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन मार्केटिंग, संपत्ति की ऑनलाइन लिस्टिंग, डिजिटल प्रचार प्रसार, परिचालन प्रबंधन, अतिथि सत्कार, ग्राहक सेवा, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर अपने पर्यटन व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पर्यटकों तक पहुंचने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
0: बांदा में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर शहर और गांव के बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दी। इस बार बाजार में चाइनीज राखियों की जगह देसी और हाथ से बनी राखियों की मांग ज्यादा दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने से बहनों में भी उत्साह का माहौल रहा। महिला के साथ एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाएं काफी खुश नजर आईं और उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिला यात्रियों ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं।
5: गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है बस की हमको, जिससे हम बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए एक सुविधा दिया है कि उन्होंने फ्री किया है रक्षाबंधन के लिए 3 दिन का, उसमें एक सहयोगी भी है। ये चीज हमको सरकार की बहुत अच्छी लगी और इस चीज से हम लोग बहुत खुश हैं और हम उनके बहुत आभारी रहे।
0: जनपद के स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में विगत 25 अगस्त को नियुक्त पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा के अंतर्गत जनपद के चयनित 43 प्राविधिक सहायकों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित नव नियुक्त प्राविधिक सहायकों को बधाई देते हुए प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो नए दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि
6: जनपद बांदा में 43 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, कहीं कोई किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ में मिला है।
0: वहीं नव नियुक्त परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बांदा के स्थानीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विगत 12 अगस्त को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने की। दीक्षांत समारोह में शामिल होने बांदा पहुंचे राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने विश्वविद्यालय के 250 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही 18 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी खुश नजर आए और सम्मान के लिए कुलपति का आभार जताते हुए कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर एम बोबड़े ने कहा कि इस बार दीक्षांत समारोह में पहली बार बच्चों के साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है।
7: विश्वविद्यालय में 250 बच्चों की उपाधियां दी गई है और उसके साथ साथ 18 मेडल्स दिए गए, उसमें से 10 बालिकाएं और 8 हमारे बालक है। कुल मिलाकर बेटियों को अगर मौका मिलता है तो शिक्षा में आगे बढ़ सकती है, ये कुलाधिपति महोदय का संदेश है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि उनके पास आने वाली सभी तरह की जन समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। इसकी निगरानी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाती है, जिसको लेकर जनपद में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में जनपद बांदा पुलिस को प्रदेश के 75 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि IGRS पोर्टल पर जो पुलिस से संबंधित शिकायतें होती हैं उनका समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाता है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मंडल जोन और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।
8: शासन द्वारा एक IGRS पोर्टल चलाया जाता है, काफी समय से चल रहा है, ये एक बहुत ही नवीन पहल है ये सरकार की। पुलिस का जो पोर्टल है उसमें जितने भी पुलिस संबंधित समस्याएं किसी को भी रहती हैं वो पोर्टल पे जाकर के बहुत ही 2 मिनट के अंदर अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकता है। ये मुख्यालय स्तर से भी जो CM ऑफिस है वहां से भी एक IGRS वहां पे सेल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है और लोगों से व्यक्तिगत बात करके उनका संतुष्टि पूछता है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं दिशा सक्सेना और मृदुला निगम के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे दिशा सक्सेना और मृदुला निगम के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं आपके फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका साथी धर्मेंद्र, और मेरे साथ हैं
1: और मैं हूँ आपका रेडियो साथी रेडियो दोस्त लोकेंद्र। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: जी नमस्कार लोकेंद्र जी, हमारा भी आपको और हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और लोकेंद्र जी, जैसे हमारे श्रोता सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम होता है व्हाट्सएप मैसेज और उनके फरमाइशी पत्रों पर आधारित, तो आप
1: नंबर मैं बिल्कुल बता आप, देता हूं, मैं आपकी मन की भावनाओं को समझ रहा हूं। हमारे श्रोता वैसे जानते हैं लेकिन कुछ नए श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं नोट कर लेते हैं, नोट करा देते हैं 9457078288945707828। इस नंबर पर आप हमें अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और अपनी पसंद का गीत और फिल्म का नाम लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल, अब से लेकर 11 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाएंगे। नंबर 94577-78288। और देखिए कुछ मैसेज हमें मिलना भी शुरू हो गए लोकेंद्र जी।
1: हाँ,
0: लेकिन ये कुछ पत्र आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, है ना?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं ये पत्र जो आपने पहला गीत लिया है जिसको सुनने के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं
0: जी,
1: तो मैं शामिल करता हूँ। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, गांव चौहलदा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल, आप शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, सुनील जैन और इनके सभी परिवार के लोगों ने हमें लिख कर भेजा है।
0: और लोकेंद्र जी देखिए इसी गीत के लिए कुछ मैसेज भी हमें मिले हैं।
1: हाँ।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है करणवीर हाउस भूचो कैंचिया से, भेजने वाले हैं बठिंडा पंजाब से। परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है हमारे श्रोता है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी,
1: और गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा, विमल गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और इनके सभी दोस्त ये हमें इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज लिखकर भेजते हैं।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है लोकेंद्र जी, और ये मिला है हमें मेहरगढ़ उमेरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, और बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और अर्जुन गवाणकर और टुक टुक।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज अगला लिखकर भेजा है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से, आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी, यूसुफ, अनाविया, अलीशा और अफान और यासीन अंसारी। और ये व्हाट्सएप मैसेज किसका है आप पढ़िए धर्मेंद्र जी।
0: ये मैसेज है मजनू का टीला से, भेजने वाले कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखकर भेजा है आप हैं सैयद खलील, मुबीन भाई, यासीन, मूसा करीम और शेख सलीम, ये है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से, इन्होंने हमें ये वैसे लिखकर भेजा है।
0: जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार इसी गीत को सुनना चाहता है, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से।
1: और ये देखिए जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, मोहम्मद इसराज और नरगिस खातून इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र जी फिर आप बताइए कौन सी फिल्म का गीत।
0: बिल्कुल, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत। आवाज अरिजीत सिंह की है, गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: लोकेंद्र जी, कार्यक्रम का कौन सा अगला गीत है जो हमारे श्रोताओं ने पसंद किया है?
2: फिल्म का नाम है कर्ज द वर्डन ऑफ ट्रुथ। इस फिल्म का गीत हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं और पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने।
1: चलिए,
2: आप हैं गांव दौलेवाला, जिला मोगा, पंजाब से स्वर्ण सिंह,
1: और ये पत्र भी मुझे कुछ मिले हैं इसी गीत के लिए।
2: हाँ।
1: और ये गीत है, ये पत्र है मोहल्ला हलवायन कस्बा शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदारानी और अरसलान फरीदी का। और ये अगला पत्र है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और असमा नाज अंसारी। और अगला पत्र है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयेश नायक, शोभा नायक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान से।
2: और ये मेरे पास मैसेज इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज है। आप हैं दिलीप कुमार सोनी, आपने लिखा है मुंदीचक भागल।

0: से, और आप हैं दाऊ सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, सन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ़ अंसारी, साथ में रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी। आपने लिखा है जसपुर उत्तराखंड से, इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश। और
1: ये
0: ये
1: अगला मैसेज कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: आप हैं सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक और इनके परिवार के सभी लोग। वाइट फील्ड बंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।
1: गांव व पोस्ट नांगल सोती से मोहम्मद असलम पेंटर हैं, और ये एक पत्र और हमें मिला है
0: जी
1: महाराष्ट्र बीड शहर से इसी गीत के लिए, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल का।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज लिखकर भेजते हैं। आप मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन ने हमें मैसेज लिखकर भेजा है।
1: राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफ़ान, अदीना नूर हैं, गांव जुझला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से।
0: और ये व्हाट्सएप मैसेज लिखकर भेजा है शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ, अरसलान और इनके परिवार के सभी लोग। तो धर्मेंद्र जी, फिर आप सुनवाइए इनको इस फिल्म का
1: बिल्कुल
0: गीत।
1: बिल्कुल, इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत।
0: और गीत के लिए गायक कलाकार हैं कुमार सानू, उदित नारायण और साथी। गीत को लिखा है समीर ने और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है संजीव दर्शन ने।
1: बिल्कुल।

0: चलिए श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का गीत के बाद एक बार फिर से। और अपने श्रोताओं को लोकेन्द्र जी एक बार फिर से हम नंबर बता देते हैं मैसेज के लिए, 94-570-78-288। इस नंबर पर आप अभी सीधे हमारे स्टूडियो में मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। और ये मैसेज लोकेन्द्र जी किसका मिला है हमें आगे?
1: ये मैसेज लिखकर भेजा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े पीएस निहावकर, और जिगांव विदर्भ से बसंतराव भोजने और मोहन करांगले का मैसेज हमारे पास आया है। और ये अगला मैसेज हमारे पास है,
0: ये मैसेज हमें मिला है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से।
1: और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप
0: पुर
1: हैं
0: खुलूस आदाब कबूल करें बोलिए, लिखते हैं
1: जी।
0: और दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफ्रा नवाज, चाहत और सादिया।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज किशोर नगर अमरावती से लिखा है, आप हैं लिखने वाले हैं हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। और ये आपके हाथ में धर्मेंद्र जी पत्र है, किसका है?
0: बिल्कुल, ये पत्र हमें मिला है जिला खंडवा गांव लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। और इसी गीत के लिए एक पत्र और हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, भेजने वाले राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शाइने और निवान शर्मा और अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान है हमारे पास करूला मुरादाबाद से और सिंधोली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी।
1: सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले और शेरी वडनेर, अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता इसी गीत को सुनना चाहते हैं। आप हैं
0: नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: और साथ में आप हैं, आपने लिखा है हमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता हैं तहसील रोड गंज डुंडवारा से के एच राही, गुड़िया वकील प्रेमी और हम्माद जमील।

0: ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है, आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, संगीता घटे, साक्षी, अंजलि, बाला साहेब, जयश्री मेहत्रे और राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुल थे। साथ में आपने एक और मैसेज लिखकर भेजा है।
1: नेहरू चौक पैठण से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा और प्रसाद जाधव। सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से हमारे श्रोता हैं हमारे साथ बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा खत्री और बेबी जिक्रा खत्री।
0: और ये चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, इसी गीत को सुनने के लिए ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखकर
1: और ये
0: भेजते
1: अगला
0: हैं।
1: मैसेज है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, बेबी अरिबा हरिबा और इमरान खान।
0: तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म लोहा का ये गीत, शब्बीर कुमार और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना है फारूक कैसर की और संगीत है
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लोकेन्द्र जी, कार्यक्रम का अगला गीत हमारे किन श्रोताओं की पसंद पर है?
1: हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज और इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भी हमारे पास है।
0: बिल्कुल,
1: देखिए,
0: पहले मैं ये पत्र पढ़ देता हूँ। कौन
1: हाँ,
0: सा
1: पहले
0: है?
1: आप पत्र ले
0: ये
1: लीजिएगा।
0: है मोहल्ला चामुंडा, कस्बा नरोली से हैं इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब निशा सिकंदर राही और साहिल अंसारी, और ये हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, प्रियंका जयप्रकाश, राहुल नूर, नमन सिमरत और शबद राहुल।
1: तो मैंने ये
0: और
1: व्हाट्सएप मैसेज सेलेक्ट कर लिए हैं जो इसी गीत को
0: बिल्कुल
1: सुनने के लिए
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: आप
1: पटियाली रोड गंडरवाला से एम
0: ये
1: अली कुरैशी।
0: मैसेज, ये मैसेज शामिल हो चुका है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: इन्होंने दोबारा से फिर इसे लिख दिया है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अब
0: श्रोता
1: श्रोताओं से
0: हमारे
1: देखिए निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार जब आपका मैसेज शामिल हो गया तो कृपया बार बार बार बार मैसेज ना करें, उससे असुविधा होती है दूसरे श्रोताओं को शामिल करने में।
0: चलिए, ये
1: आप
0: अगला
1: हैं
0: मैसेज हमें मिला है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी का। ये अगला मैसेज भी हमें मिला है, और ये मिला है हमें टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, अशोक कुमार, श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार का।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं, आपने भी दोबारा से कर दिया है। देखिए, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और इनके परिवार के सभी लोग, और इसी गीत को सुनना चाहा है। लोमरी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ, और परमार अमित भाई, कमलेश भाई मैसेज करते हैं हमें सरसिया गांव अमरेली जिला गुजरात से, और हमारे नियमित श्रोता नगीना से अनिल विनोचा जी, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका, और साथ में हैं सहज अरोड़ा और इनके परिवार के और नाम भी लिखे हुए हैं। सभी इसी गीत को सुनना चाहते हैं और ये व्हाट्सएप
0: शाहजी,
1: मैसेज।
0: शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा।
1: और कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं प्रवीण माली और मीना श्रीमाली।
0: डाबगी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, चेतन भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत।
1: नई बस्ती फतेही खालसा जिला अमरोहा से आप हैं यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया, अलीशा और अफ़ान सिद्दीकी, और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास जलगांव जंक्शन विदर्भ श्रोता क्लब से ये मैसेज लिखकर भेजा है दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने, और ये व्हाट्सएप मैसेज किसका है धर्मेंद्र जी?
0: जाखोद राजस्थान से ही हमारे श्रोता हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखा है, आप हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार।
0: लेवाई छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इनके दोस्त इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, और ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़िएगा धर्मेंद्र जी।
0: ये मलोड पंजाब से हमें मैसेज मिला सतीश मिगलानी, सीमा और विवान मिगलानी का।
1: तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं फिल्म,
0: पुलिस पब्लिक का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।
1: और इस गीत
0: गीत
1: के
0: के
1: लिए शब्द रचना असद भोपाली की है और संगीत राम लक्ष्मण का है।

0: पूछता हूँ, अभी आपने फिल्म पुलिस पब्लिक का ये गीत सुना, और धर्मेंद्र जी अगला गीत कौन सी फिल्म का
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोता सुनना
1: अगला गीत श्रोता सुनना चाहते हैं, फिल्म आशिक का। आशिक फिल्म के इस गीत के लिए आवाज़ दी है रूप कुमार राठौर और अलका याग्निक के, बोल हैं समीर के और संगीत संजीव दर्शन का है। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका बलविंदर रोहित जैतक विरक। और ये अगला मैसेज हमें मिला है लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति और प्रयाग चौधरी का।
0: मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा और विमान मिगलानी इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और आबाद खान ने ये मैसेज हमको किया है। और अगला मैसेज है
1: जनकपुरी सहारनपुर से हैं जैन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें भेजा है जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का।
0: आप हैं, आपने मैसेज किया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी लोग। आपने कलानौर से लिखा है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
1: मोहल्ला अफगानन शेरकोट से हमारे श्रोता हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत।
0: धाड़ी नादुरा महाराज से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे हम तक लिख कर भेजते हैं ये मैसेज। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से आप हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा लिख भेजते हैं हमें। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी और ऋषिकेश दले लिखकर भेजते हैं। आप हैं
1: शिवहारा से शाही मार्केट बिजनौर से हमारे श्रोता आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, रफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का। और बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू।
0: साथ में आपने मैसेज लिखकर भेजा है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। आपने लिखकर भेजा है आप हैं गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांती, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नु गोस्वामी लिखकर भेजते हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और गुरुवंश सिंह जोड़ा।
0: कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्य और इनके दोस्त हमें व्हाट्सएप में से लिखकर भेजते हैं आप हैं
1: ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर और विशाल नवानकर।
0: गांव फरासी जिला हिसार हरियाणा से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लिखकर भेजते हैं।
1: नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा।
0: आपने दुर्गा कॉलोनी हाँसी से लिखा है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और साथ में सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू।
1: और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं लोकेन जी आशिक फिल्म का गीत, आवाज रूप कुमार राठौर की और अलका याग्निक की।
0: और इस गीत का है समीर ने और संजीव दर्शन ने संगीत तैयार किया है।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं को नंबर बता देते हैं, हमारा नंबर
1: 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीत लिखकर अभी लाइव हमसे अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं।
0: और ये मैसेज हमें मिला है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और साथ में राहुल वर्मा, विनीत और सोनम वर्मा।
1: आप हैं गांव और पोस्ट राहू नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान और राघव चौहान। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभादेवी और इनके परिवार के और लोग भी हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। ये मैसेज हम तक लिखकर भेजा है। आप हैं अमरपुर पेंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लवी श्रीवास्तव। आपने लिखा है हमें
0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका। ये मैसेज शामिल हो चुका है, पत्र शामिल हो चुका है, दरअसल इनका पत्र हमें मिला था। और रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा हमें मैसेज डाल रहे हैं गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
1: ये मैसेज लिखकर भेजा है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंदे, प्रणय और प्रतिभा ने। आपने लिखकर भेजा है कुंदरकी रोड मझोली से निजाबुल हसन मलिक, मोहम्मद बिलाल मलिक, मोहम्मद दानियाल और अलीजा सेरी और मुनाजिर खान। आप ही इसी गीत को सुनना चाहते
0: और
1: हैं।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है गांव लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, राजस्थान से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।
1: और आप हैं, आपने लिखा है परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से। इसी गीत को सुनने के लिए हमें लिखा है
0: जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव, राखी दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल।
1: बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन से मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा और इनके दोस्त।
0: हतेंद्र दास स्टेट आसाम से इसी गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। और ये हैं हमारे श्रोता पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया।
1: और ये मैसेज लिख भेजा है हमें
0: पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।
1: आप हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुर गंज, गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद।
0: और ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं आशिकी फिल्म का ये गीत, कुमार सानू की आवाज में। गीत है समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, अभी आपने आशिकी फिल्म का गीत सुना और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म छिचोरे से है, अरिजीत सिंह के स्वर में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत प्रीतम का है, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। MLB रोड ग्वालियर से आप हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव और SK पप्पी आप हैं।
1: पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज से हमारे श्रोता हैं बिहार से, प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल और नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से, ममता रानी, छवि अनोखी और पिता लाडो, दीक्षा देव, दिवांशु और डब्लू जी,
0: महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलसिफा अंसारी लिखते हैं जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से,
1: उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी गांव मुरैना से हैं कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार और इनके मम्मी पापा।
0: आपने लिखा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफताब अंसारी, मोहम्मद कैफ, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा।
0: आपने लिखा है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता हिमानी और अभिषेक श्रीवास्तव। आपने लिखकर भेजा है
1: पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू।
0: कोल सिटी बरका बरका काना से आप हैं अफजाल ताज,

0: शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल मलिक। इसी गीत को सुनने के लिए
1: गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से है मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद।
0: आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष रजा, डब्बू सम्राट। आपने लिखा है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, नई दिल्ली से।
1: और पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे।
0: ये मैसेज हमें लिख भेजा है रामगढ़ कैंट से, आप हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, और गांव अलगी डांड, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष और फूलचंद यादव।
1: और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए अंतिम मैसेज श्रोता हम शामिल कर रहे हैं, और ये अंतिम मैसेज हमें मिला है सब्जी मंडी बुल्ढाना से, शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
0: तो श्रोताओं सुनते हैं फिल्म छिछोरे का ये गीत अरिजीत सिंह के स्वर में।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 के

हर्ट्स पर दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये गीत फिल्म कसम से। गायक कलाकार हैं नितिन मुकेश और आशा भोसले। गीत इंदिवर का है और संगीत बप्पी लहरी का।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के युगल स्वर में फिल्म कश्मीर की कली का गीत। शब्द रचना SH बिहारी की है और संगीत OP नैयर का है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कश्मीर की कली में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में ये गीत फिल्म पराया धन से। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत आर डी वर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म जानी दुश्मन का यह गीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना वर्मा मलिक की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मोहम्मद रफ़ी और आसम हौसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म सौदागर का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सौदागर में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत, लता मंगेशकर और कमल बरोत के स्वर में, फिल्म पारसमणि से।

फिल्म पारसमणि के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, AI और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और NR प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओ, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
4: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
5: Unchangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
6: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
5: Yes?
6: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
5: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
6: Yes, let us play.
4: She tied a scarf over Ongshangla's eyes.
5: Now, tell me, what do I hold in my hand?
6: How can I? My eyes are closed. I can't see.
5: You can find out. Try it. What do I hold?
4: Ongshangla touched it.
6: It is something soft. A flower.
5: Yes. But what flower is it? Smell it.
6: It is a rose.
5: Good. Now try another thing. What do I hold?
6: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
4: Ongshangla took the bell and shook it herself.
5: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
4: Ongshangla touched it.
6: It is a glass.
4: She put one finger slightly into the glass.
6: A glass of water?
5: Are you sure? It could be milk or juice.
4: Ongshangla tasted it.
6: Oh, it is not water. It is orange juice.
5: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
4: She took off the scarf. Ongshangla blinked and looked at her.
6: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
5: So, Ongshangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
6: Yes, Ava.
5: Good girl.
4: Ongshangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
2: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
7: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
8: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
7: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों,
3: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: यस।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ
7: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
4: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
8: 15?

0: 40।
1: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
0: 13, 12, 11। ओह
1: जॉन्सी,
0: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
0: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
1: क्या कम हो गए हैं?
0: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
0: 6, 9, 6, 5, 4। ओह
1: जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
0: ओनली 4।
1: मेरी तरफ देखो
0: सू, ओनली 4। ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
0: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ हाँ,
0: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉन्सी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: 2। ओह अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
0: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
3: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू मेरी दोस्त।
1: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
1: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: कुछ अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी।
0: हम्म,
1: कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉन्सी।
0: हम्म,
1: एक बुरी खबर भी है।

0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेयरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेयरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
0: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस।
1: हाँ,
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोता भी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हमारे श्रोता सुन सकेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज संध्या 7:32 पर आप सुन सकेंगे भजन। कलाकार होंगी प्रतिभा सिंह। विविधा कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर डॉक्टर शुभा माहेश्वरी की वार्ता का विषय रहेगा नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या नया संवाद। हमारे किसान भाई आज शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता, मूंगफली में समसामयिक कार्य। डॉक्टर सौरभ दुबे से बात करेंगे अंकित कुमार। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, रहस्य सीरीज, लव स्टोरीज और बूस्टर्स का। आपसे कुछ ही देर बाद दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित रविशंकर से सितार वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग मधुवंती। परिवार जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज दिन में 1:15 पर। इसमें आज क्रम रहेगा कुछ माटी की, कुछ कुम्हार की।

लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाबी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। आज दोपहर 1:45 पर कलाकार रहेंगे गुरदास मान। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज शाम 5 बजे किसानों की आय दुगनी करने हेतु आप सुनेंगे जानकारी, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ई नाम योजना के विषय में। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। आज दिन में 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, आज दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से, शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या, रात्रि 8:30 कार्यक्रम एक ही फिल्म से, रात्रि 10 बजे भूले बिसरे गीत और रात्रि 10:30 पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत फिल्मी गीत सुन सकते हैं। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित रवि शंकर का सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुवंती। रचना विलंबित वैद्युत गत 3 ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रविशंकर से सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुवंती। रचना विलंबित व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युवाणी में आज शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, रहस्य सीरीज, लव स्टोरीज और पोस्टर्स का। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे पंजाबी लोकगीत, कलाकार होंगे गुरदास मान। हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से, 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत, 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या, 8:30 एक ही फिल्म से, 10:00 भूले बिसरे गीत और 10:30 आपकी फरमाइश। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा के स्वर में ये गीत फिल्म एक दूजे के लिए से। शब्द रचना गीत के लिए आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को अभी आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए में।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी का गीत किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत आर डी वर्मन का।

अभी आपने किशोर कुमार को सुना फिल्म मेरे जीवन साथी में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म अनमोल मोती का गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत रवि ने तैयार किया है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म 10 नंबरी का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है।
1: दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा?
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दस नंबरी में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत फिल्म याराना से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीत अनजान का है और संगीत राजेश रोशन का।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म याराना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी ये अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे भजन, कलाकार रहेंगी प्रतिभा सिंह। ये थी कुछ जानकारी कार्यक्रम संबंधी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4,000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: He today commissioned INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class, at Naval Dockyard, Mumbai. Indigenously designed and constructed, Nipun is a purpose-built platform designed to support a wide spectrum of diving and underwater operations. Speaking at the commissioning ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, said amid a period of strategic churn, Nipun is going to be a powerful addition to the Navy's specialized underwater capabilities required for multi-domain deepwater operations at sea.
1: It is my proud privilege to be here for the commissioning of India's second indigenously designed and built diving support vessel, INS Nipun. As a fighting Navy, I hardly need to state that combat readiness is our foremost responsibility and highest priority. Induction of this capability today is an opportunity for us to reflect upon our unifying purpose to build and maintain robust operational and combat capability that safeguards India's security and maritime interests at all times and at all places.
0: In Nepal, the death toll from last week's devastating floods and mudslides has risen to 903, while more than 4,247 people remain untraceable. Bodies have been recovered from all eight affected districts of Nepal as rescuers race against time to search for the missing and rescue those stranded. Meanwhile, at least 933 workers are believed to be trapped at around half a dozen hydropower projects. Rescue teams backed by India and other experts are searching around the hydropower tunnels, including Trishuli 3A. In Tibet, the death toll currently stands at 16, with 546 reported to be missing. Following the severe flooding in Nepal and heavy rainfall in catchment areas, water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. However, the water levels and discharge from both rivers have declined over the past 24 hours. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex declined 271 points to 76,993, while the Nifty lost 110 points to 24,066 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन आज राजधानी बिश्केश में भारत के दोस्त के साथ बातचीत की। योगा और मानस एकेडमी समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के साथ काम करने वाले चार वफूद इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने बिश्केश के महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आजम आज शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 137वें एडिशन में कल गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में मुनाकिद किए जाने वाले मिशन शक्ति सेट का जिक्र किया। स्पेस किड्स इंडिया के सीईओ ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम के जरिए मिशन शक्ति सेट के जिक्र की तारीफ की है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि नमन आपको। आपने हमारे मिशन के बारे में अपने मन की बात में जिक्र किया, हमारे लिए भर उड़ के आए। दो साल से हम इस मिशन के लिए काम कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि काश ये बात प्रधानमंत्री जी के कान तक जाए और वो दिन हमें साकार हुआ। बहुत धन्यवाद मिशन शक्ति सैट आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक सदर भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को उनकी बरसी पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि साबिक सदर एक बेहतरीन मुतनज़िम और आलिम थे जिन्होंने अवामी जिंदगी में अपने दहाइयों के तवील सफर के दौरान मुल्क और उसके इकदार के मुतजलजल वाबस्तगी की मिसाल दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि कौम के तई उनकी लगन और अवामी जिंदगी में उनकी दरीना शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ریاست کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنماشٹمی کے موقع پر اپنے ورثے کے تحفظ، سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے اور ایک طرفہ یافتہ اور شاندار اتر پردیش کی تعمیر کا عہد کریں۔ وزیر اعلی نے لکھا کہ شری کرشن کی زندگی

0: में फलाही हुक्मरानी की बुनियादी रूह से भी मुतासिर करती है। आज इसी जज्बे के साथ हुकूमत मुआशे के आखिरी मुकाम पर खड़े शख्स की जिंदगी में इज्जत और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के दौरे पर हैं। वो रुपेडिया में बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड के दरमियान नई तामीर शुदा और इलेक्ट्रिक रेल लाइन का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वाराणसी जाने वाली ट्रेन को नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नई रेल लाइन के खुलने से बहराइच और सरहदी इलाकों के लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होने की उम्मीद है और नेपाल की सरहद से मुतालिक तजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होने के इम्कान हैं। समाजी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज असीम अरुण ने बताया कि इस साल विमुक्त जाति दिवस के लिए रियासती सतह का अहम प्रोग्राम आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मुनक़िद होगा। आज़ादाना खानाबदोश और नीम खानाबदोश जातों की तारीखी अहमियत और हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ जिले सतह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। वजीर असीम अरुण ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में आज़ाद जातों की शराकत में बेमिसाल रही है और ये दिन उनकी तारीखी जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश करने उन्हें कौमी धारे में जम करने के लिए फलाही स्कीमों के बारे में मालूम फैलाने का एक अहम मौका है। हरियाणवी गुलकार अंकित बालियान के कत्ल केस में फरार दो मुजरिम आसूब शामली में पुलिस मुकाबले में मारे गए। इन दोनों निशानाबाजों पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस उनकी तलाश में थी। तसादुम में दो कांस्टेबल जख्मी भी हुए हैं। हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर बदामन से दिल्ली जाने वाली एक कार संभोली थाना इलाके के हाजीपुर गांव के करीब बेकाबू होकर उलट गई। चार अफराद मौके पर ही जां बहक हो गए जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची। लाशों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जख्मी नौजवान अस्पताल में जेर इलाज है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में सड़क हादसे पर चार लोगों की मौत पर गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतल्लिका जिले के अफसरान को मुतासरीन को रिलीफ फराहम कराने की हिदायत की। वजीर आला ने यह भी हुक्म दिया कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और उनसे राबता किया जाए। वजीर आला ने जख्मियों के जल्द सेहतियाबी की भी ख्वाहिश की है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत भर में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों के सतहआब में इजाफा हो रहा है। बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में दरियाए मंदाकिनी के पानी की सतह बुलंद होने के बाद राहत और बचाव के काम जंगी बुनियादों पर जारी है। वाराणसी जिला इंतजामिया ने गंगा और वरुणा नदियों के पानी की सतह मुमकिन इजाफे के पेशी नजर 61 फील्ड फ्लड रिलीफ कैंप 121 फ्लड पुलिस और 197 कश्तियों का इंतजाम किया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम परिवार जगत। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी साथी ज्योति। श्रोताओं, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, बाढ़, भूकंप, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सर्दी, गर्मी, जिसका हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, या यूं कहें कि जीवन अत्यंत ही मुश्किल हो गया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। आज जैसा कि हम नेपाल में देख रहे हैं, विकराल जल सैलाब से जीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोग घर से बेघर हो गए और हजारों जाने चली गईं, दुकान, मकान, बिल्डिंग की बिल्डिंग धराशायी हो गई ताश के पत्तों की तरह। ये सब हमारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही तो

तीजा है, हमने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का अत्यंत ही दोहन किया है। श्रोताओं, अब संभलना होगा, अपने नेचर के नजदीक जाना होगा, उससे मित्रता करनी होगी, नहीं तो ये मानव के लिए ही नहीं वरन समस्त जीव जंतुओं के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा। श्रोताओं, एक समय था जब आज के समय की तरह आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, तो सब कुछ हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता था, जैसे जल, वायु, धूप, मिट्टी, फल, सब्जियां, औषधियां, वनस्पति, सब कुछ। लेकिन आज हम सब कुछ जैसे भूल गए हैं और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं असाध्य बीमारी के रूप में। श्रोताओं, प्रकृति हमारी वैद्य है। कहा जाता है प्रकृति में उपचार की अद्भुत शक्ति है जो मौन होकर उपचार करती रहती है, ना कोई फीस, ना कोई शिकायत और ना बदले में कुछ मांगती है। सुबह की ताजी हवा मन को सुकून देती है, सूर्य की हल्की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं और हरे भरे पेड़ों के बीच बिताया गया समय तनाव को कम करने में मदद करता है। श्रोताओं, हमारे पूर्वज प्रकृति के इस महत्व को बहुत पहले समझ चुके थे। आयुर्वेद में नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, आंवला और कई अन्य वनस्पतियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है। हमारे घरों में तुलसी का पौधा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य और औषधियों के उपयोग से जुड़ा रहा है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। सुबह की सैर की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है, खुले आकाश की जगह बंद कमरों में समय बीतता है, ताजे और स्थानीय भोजन की जगह अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप हमारी जीवन शैली में तनाव, नींद की समस्या और शारीरिक निष्क्रियता जैसे परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रकृति की ओर लौटना बेहद जरूरी है। इसके लिए इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे सुबह कुछ समय खुले वातावरण में बिताएं, पेड़ पौधों के बीच टहलिए, सूरज की हल्की रोशनी का आनंद लीजिए, मौसमी फल सब्जियां खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए और मिट्टी, पौधों तथा हरियाली से अपना रिश्ता जोड़िए। श्रोताओं, हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की साथी है, लेकिन हर बीमारी का इलाज केवल प्राकृतिक उपायों से भी संभव नहीं होता। गंभीर एवं लगातार बनी रहने वाली समस्या में डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सक जरूरी है। प्रकृति हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहयोग दे सकती है, लेकिन चिकित्सा का विकल्प हमेशा नहीं होती। श्रोताओं, प्रकृति हमें महत्वपूर्ण संदेश देती है संतुलन का। जिस तरह नदी निरंतर बहती है, पेड़ मौसम के साथ बदलते हैं और सूरज रोज समय पर उगता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी भोजन, व्यायाम, नींद, काम और आराम का सही संतुलन होना चाहिए। इसलिए आइए आज से प्रकृति को केवल देखने की चीज ना समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उसके लिए एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, हर दिन कुछ कदम प्रकृति के साथ चलें, प्राकृतिक और संतुलित भोजन को ही महत्व दें। श्रोताओं, प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है तो जीवन खिल उठता है। प्रकृति जब स्वस्थ रहती है तो मानव भी स्वस्थ रहता है। तो आइए प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं, हमारे स्वस्थ जीवन की सबसे सुंदर साथी है। तो आइए प्रकृति को बचाएं और उसको करीब लाएं, स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं। तो श्रोताओं, ये तो हमने चर्चा की प्रकृति हमारा वैद्य विषय पर। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, परंतु इससे पहले आइए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: श्रोताओं, संदेशों के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम परिवार जगत में। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे प्रकृति के संतुलन की। प्रकृति यदि संतुलित है तो तभी पृथ्वी स्थिर है। जरा सा संतुलन बिगड़ा नहीं कि हलचल हो जाती है। उसी तरह का संतुलन हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्रोताओं, हमें अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी है। परिवार हो, दोस्ती हो, पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो या फिर दादा दादी नाना नानी का, हर रिश्ता हमें भावात्मक सहारा देता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं ना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। समय की कमी, बढ़ती अपेक्षाएं, मोबाइल और सोशल मीडिया की व्यस्तता तथा छोटी छोटी बातों की होने वाली गलत फहमियां रिश्तों में दूरी पैदा कर रही हैं। इसके कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। श्रोताओं, सबसे पहले जरूरी है समय देना। किसी भी रिश्ते को मजबूती के साथ हमें समय देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपेक्षाओं का संतुलन बनाए रखना। किसी से भी ज्यादा अपेक्षा संबंधों को बिगाड़ती है। तीसरा, संवाद रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी है। जब संवाद टूटता है तो रिश्ते नहीं टिकते। मन में बात को दबाकर रखना या छोटी सी परेशानी को बड़ा बन जाने देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। श्रोताओं, रिश्तों में लेना देना बेहद जरूरी है। यादें यदि एक व्यक्ति हमेशा समझौता करता रहे और दूसरा केवल अपनी इच्छाओं को महत्व देता रहे तो रिश्तों में असंतुलन पैदा होना स्वाभाविक है। स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे की जरूरतों, भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। श्रोताओं, एक बहुत जरूरी बात, रिश्ते थोड़ी व्यक्तिगत जगह। प्यार का अर्थ ये नहीं कि हम सामने वाले की हर गतिविधि पर नजर रखें या उसके हर निर्णय को नियंत्रित करें। विश्वास रिश्तों को सांस लेने की जगह देता है। आज मोबाइल ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन कई बार अपनों के बीच दूरी का कारण भी बन जाता है। रिश्तों के संतुलन के कारण कई बार माफ करना और माफी मांगना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन रिश्तों में संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हम हर बार खुद को ही दबाते रहें। आत्मसम्मान और रिश्ते दोनों साथ चल सकते हैं। जहां प्रेम है वहां सम्मान भी होना चाहिए। अंततः रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। उन्हें समय, विश्वास, संवाद, स्नेह की जरूरत होती है। केवल ये सोच लेना कि यह मेरा अपना है, रिश्ता अपने आप बना रहेगा, काफी नहीं है। रिश्तों को सींचना पड़ता है, निभाना पड़ता है। कुछ खास रिश्तों पर आधारित है हमारा ये आज का विशेष कार्यक्रम, कुछ माटी की कुछ कुम्हार की, जिसमें हमने नानी और थेवती के खूबसूरत रिश्ते के विषय में जानकारी ली। नानी यानी सरस्वती और उनकी थेवती हैं ईशानी। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम कुछ माटी की कुछ कुम्हार की।
1: मिट्टी बोली कुम्हार से, क्या तू मुझको जान। मिट्टी बोली कुम्हार से, क्या तू मुझको जान। तेरी सांसों से बनी हूँ, तेरा मुझ पर मान। कुम्हार हंसा और बोला, तू ना होती तो क्या मैं होता। तेरी सूरत को मैं संवारूं, हाथों से तेरा गढ़ना होता। कभी चाक पर घूम घूम कर रूप अनोखे धारण किए, कभी आग में तप कर खुद को मजबूत बना लिया। कुछ माटी की कुछ कुम्हार की, दोनों का है संग जरूरी। मिलकर ही है बनता हर घड़ा, हर दीपक की है लाचारी। सीखा जो इससे हमने वो जीवन की है पहचान, संघर्षों से ही बनता इंसान, सहकर हर तूफान। संघर्षों से ही बनता इंसान, सहकर हर तूफान। जी हाँ श्रोताओं, जिस तरह से एक कुम्हार बेजान मिट्टी में जीवन के रंग डाल देता है, अपने सुंदर हाथों से मिट्टी को एक आकार देता है जिसका लोगों के सामने एक अस्तित्व होता है, उसी तरह माता पिता अपनी संतान को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, जिसमें वे अपना तन मन धन, यूं कहें कि सारा जीवन ही लगा देते हैं।
0: परंतु उसके बाद भी विचारों और सोच में दोनों पीढ़ियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इसे ही जेनरेशन गैप कहा जाता है और ये गैप तब और अधिक बढ़ जाता है जब बात होती है ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में लगभग 4 दशक का अंतर होता है, जो एक बहुत लंबा अंतराल है, परंतु कहा जाता है कि मूल से ज्यादा ब्यास प्यारा होता है। खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक छत की तरह होते हैं, जहाँ उनके साथ रहने वाले बच्चे सुरक्षित होते हैं, तो वहीं ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके बच्चे आज के समय से उनको जोड़ते हैं। कैसा होता है ये खूबसूरत रिश्ता, ये लोग कितना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जिसकी जानकारी के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सरस्वती जी को, जो कि एक अध्यापिका हैं। उनके साथ ही हमने आमंत्रित किया है ईशानी को, जो कि एक स्टूडेंट है। आइए इन दोनों से हम बात करते हैं कि उनका रिश्ता कैसा है। एक नानी है, एक देवती है, आइए उनसे बात करते हैं। सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
0: ईशानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
0: सरस्वती जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने में और इस पीढ़ी में कितना अंतर समझते हैं, जिसमें लगभग 40 सालों का अंतराल है।
2: हम दोनों में तो 50 का है, लंबा अंतर है। पहले में अब में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। हम अपने परिवार वालों से जुड़े रहते थे, हर समय के साथ ही रहना अच्छा लगता था। अब बच्चे मोबाइल में जुड़े रहते हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम है तो मोबाइल से ज्यादा जुड़े रहते हैं, मोबाइल से ज्यादा सीखते हैं। हम अपने परिवार में माँ से, भाभी से, बहन से सीखते थे ज्यादा।
0: उस समय परिवार भी बहुत बड़े हुआ करते थे।
2: अकेलेपन का एहसास बच्चों को नहीं होता था, जो अब होता है।
0: नानी जी ने तो बताया कि आप मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, आप हमें अपनी नानी जी के बारे में बताएं।
3: जी, मेरी नानी जी का नाम सरस्वती है और मेरी नानी एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका है। मेरी नानी मतलब बहुत मेहनती है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी नानी से हमेशा मेहनत सीखना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से परिश्रम करके आज इस मुकाम पर हमें खड़ा किया है।
0: आपको भी बड़ा होकर टीचर ही बनना है नानी की तरह।
3: जी
0: सरस्वती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि पीढ़ी कितनी क्रिएटिव है।
2: हम सब कुछ अपने घर वालों से सीखते थे, जबकि ये बच्चे मोबाइल से ज्यादा सीख लेते हैं। उस टाइम मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो हमें तो अपने बड़ों से ही सीखना था। आज के बच्चों को इसकी कम जरूरत है, जरा बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाया उसमें ज्यादा सीख पाते हैं। बस ये तो अंतर तो है
0: कि मोबाइल से ही बच्चे सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आपका भी मन करता होगा कि मेरे पास बैठे, मेरी कहानियां सुने, मेरे से बात करें, ये थोड़ा सा बच्चे नहीं कर पाते आजकल के।
2: टाइम ही नहीं होता बच्चों के पास। जैसे हम तो बहुत खेलते थे, खेल में ज्यादा टाइम बिताते थे, पढ़ाई भी करते ही थे, लेकिन आज के बच्चे पढ़ाई में इतना बर्डन हो जाता है कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता इतना।
0: गेम खेलने के लिए भी वो बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं।
2: फिर ऐसा माहौल भी नहीं रहा कि बच्चे बाहर खेलें। अब पहले तो सब बाहर ही, सबके बच्चे बाहर खेलते थे, छोटे छोटे से मैदान होते थे मोहल्लों में, उनमें खेलते थे सब बच्चे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अब बच्चों को मोहल्ले का या पड़ोसियों का पता ही नहीं रहता, कौन पड़ोस में रहता है, कौन क्या, कुछ नहीं पता होता।
0: एक टाइम ऐसा था कि रिश्तेदारी में भी बहुत दिन तक रहते थे, अपनी मामा के चले गए और वहाँ पर मौसी के चले गए, तो बहुत बहुत टाइम रहते थे।
2: अब तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं करना चाहते बच्चे और ना ही पेरेंट्स करवाना चाहते।
0: इस पीढ़ी की कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं, और खासकर ईशानी की?
2: नहीं, वैसे तो ईशानी बहुत अच्छी है। हमारे घर के माहौल के अनुसार ये सुबह जल्दी उठती है, पूजा पाठ नहा के, ये हमेशा ही नहा के जाती है स्कूल भी।
0: अच्छा।
2: और सुबह पूजा भी करती है हमारे साथ। इसमें ये बात है तो हम अच्छी डाल पाए कि ये भी हमारे से, जैसा हमारे परिवार का माहौल है वैसे ये करती है।
0: नहीं तो आजकल के पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे देर से सोते हैं, ये उनका रूटीन बन गया है।
2: नहीं, ये वैसे एक आवाज में उठ जाती है,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: सुबह उठती है, पहले से ही इसको आदत ये डाल दी गई थी, बहुत छोटी थी जब ये।
0: हाँ।
2: कि इसको सुबह ही उठा करके हम ताजे पानी से ही नहलाते थे, वो इसकी आदत बन चुकी। अब तो ये बिना नहाए नहीं रह पाती और नहीं बिना नहाए कभी जाती स्कूल।
0: ईशानी की कोई ऐसी आदत नहीं है जो आपको परेशान करती हो?
2: थोड़ा गुस्सा करती है बस।
0: अच्छा अच्छा, किस बात पर ईशानी को बहुत गुस्सा आता है?
2: बस वैसे किसी भी बात पे गुस्सा कर जाती है। अच्छा। ऐसे जिद भी किसी चीज की नहीं करती। लेकिन

0: आ जाता है, बच्चा है सब समझ
1: संस्कारी बच्ची है।
0: जाएगी।
1: आजकल के माहौल को देखते हुए
0: हाँ
1: कौन से वो संस्कार है कि आप बच्चों को
0: देखो
1: सिखाना
0: अपने बच्चों
1: चाहेंगे?
0: को, देखो सभी मम्मी को ये होना चाहिए अपने बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से इससे थोड़ा दूर रहें, जरूर देखना, मोबाइल भी देखना चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, जानकारियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम किसी भी तरह निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तभी बच्चे हम हमारे साथ जुड़ पाएंगे। बच्चों को प्यार
1: हाँ
0: चाहिए, वो प्यार हमें देना चाहिए उन्हें।
1: जी
0: कई बार ऐसा होता है मम्मी बाहर जॉब कर रही हैं और फिर आने के बाद भी मोबाइल में टीवी में लग जाती हैं, बच्चों की नहीं सुन पाती, वो ठीक नहीं है। बच्चों की
1: जी
0: बातें सुननी चाहिए, स्कूल की बातें सुननी चाहिए, क्या स्कूल में हुआ, कैसे हुआ, वो सारी समस्याएं सुननी चाहिए बच्चों की।
1: हाँ, मतलब कि ये है कि आजकल के बच्चों को हम बच्चा ना समझ के एक दोस्त बनाकर
0: हाँ बस
1: चले उनसे।
0: उस तरह सारी बातें पूछे उनसे, दोस्त बन के
1: जी
0: बताएंगे बच्चे।
1: अब हम ईशानी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने घर में अपनी नानी को, अपनी मम्मी को कितना टाइम देते हैं और उनकी कितनी बात मानते हैं?
2: जी मैं अपनी नानी की और मम्मी की बहुत ज़्यादा बात मानती हूँ, और जब स्कूल जाते हैं तब तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन
1: हाँ
2: जैसे अभी छुट्टियाँ चल रही हैं एग्ज़ाम्स के बाद, तो मैं ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ ताकि नानी कभी अपने आप को अकेला महसूस ना कर पाए और ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ। तो चाहे उनसे कोई भी बात ना करे, मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नानी ने तो बता दिया आपकी उनको कौन सी बात परेशान करती है, कौन सी बात आपकी अच्छी नहीं लगती। आप हमें बताएंगे कि आपको नानी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। नानी बता रही थी आपको कि ईशानी को गुस्सा आ जाता है, आप बताएं।
2: नानी जैसे कभी कभी किसी बात पर अपसेट हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नानी अपसेट हो
1: अच्छा,
2: गई है, बुरा लगता है।
1: तो आप उनको खुश करने की कैसे कोशिश करते हैं?
2: उन्हें मतलब पानी, नींबू पानी ये सब बना के देते हैं, फ्रूट्स काटती हूँ मैं तो वो
1: अच्छा,
2: देती हूँ तो नानी खुश हो जाती है।
1: अरे वाह। और बताएं आप हमें कि नानी की कौन सी आदत आप सीखती हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है?
2: नानी जो मेहनत करती हैं, नानी का खुश रहना, उसमें ही मैं खुश हूँ कि नानी खुश रह रही हैं और वो कभी अकेला महसूस ना करें मेरे साथ, तो
1: हाँ
2: इसलिए एक दोस्त बनकर नानी सब बातें बताती हैं, मैं उन्हें सब बातें बताती हूँ, तो इस तरह करते हैं हम लोग।
1: वेरी गुड, आप बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी बच्ची हैं, है ना। अभी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आप दोनों से, है ना, तो उससे हमें पता चलेगा कि आप दोनों की, आप तो कह रहे हैं कि मेरी ईशानी से बहुत अच्छी दोस्ती है, वो मुझे दोस्त बना के रखती है। ईशानी कह रही है कि नानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और नानी जब अपसेट होती है तो मैं उनको मना लेती हूँ, उनको नींबू पानी बना के पिलाती हूँ। लेकिन अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे पता चलेगा कि आप नानी की कितनी केयर करती हैं, नानी के बारे में कितना जानती हैं, और नानी का पता चलेगा कि वो ईशानी के बारे में कितना जानती हैं। रेडी हैं आप लोग?
0: जी
1: चलिए सबसे पहले हम पूछेंगे ईशानी से कि आप हमें बताएं कि नानी का फेवरेट कलर कौन सा है?
2: ग्रे कलर।
1: क्या सही है, ग्रे कलर है आपका
0: जी
1: पसंद?
0: जी
1: अच्छा, नानी का पसंदीदा फूड कौन सा है?
2: मैंगो।
1: ठीक बोल रही है।
0: हाँ जी।
1: और नानी कब सोकर उठती है सुबह में?
2: नानी 3 o'clock इन द मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग में?
2: यस
1: क्या सही बोल रही है ईशानी?
0: कभी कभी, लेकिन अधिकतर तो 4 बजे उठती हूँ, कभी कभी 3 बजे भी उठना पड़ जाता है।
1: बहुत
0: पहले
1: सुबह
0: तो
1: उठती
0: उठती
1: है।
0: थी लेकिन अब थोड़ा लेट उठने लगी।
1: अच्छा, ईशानी बताएं कि नानी को मूवी कौन सी पसंद है
2: देवदास।
1: सही में?
0: हाँ वो मैं 2-3
1: अच्छा
0: बार देख चुकी।
1: अच्छा इसलिए ईशानी को लगा कि बहुत फेवरेट मूवी है नानी
2: एक
1: की,
2: में
1: है?
2: देवदास और एक वीर ज़ारा।
1: अरे वाह। अच्छा ईशानी बताएं कि किस बात पे नानी आपको डांटती हैं?
2: गुस्सा करने पर, एक्सरसाइज ना करने पर, योगा ना करने पर, मोबाइल चलाने पर, इस पे
1: इन सब बातों पर डांट पड़ती है
0: डांट
1: ईशानी की,
0: पड़ती है।
1: है? अब ईशानी बताएगी कि नानी को कौन सा गाना बहुत ज्यादा पसंद है?
2: जी भगवान जी की जैसे भजन और ये सब, आरती कुंज बिहारी की, हनुमान जी
1: अच्छा
2: की आरती, ये सब।
1: अच्छा ये सब नानी को भजन बहुत पसंद है। अरे वाह, तो ईशानी तो पास हो गई, ईशानी ने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ईशानी तो अपनी नानी से बहुत प्यार करती है, हमें पता चल गया। ते हैं अब है बारी नानी की कि नानी ईशानी को कितना पहचानती है, कितना साथ रहती है ना। आप हमें बताएं कि ईशानी को कौन से ड्रेस पहनना बहुत पसंद है?
0: पहले तो लहंगा पहनती थी लेकिन अब जींस
1: अच्छा
0: और टॉपी पहनती है।
1: और ईशानी का फेवरेट कलर कौन सा है?
0: पिंक कलर।
1: अरे वाह, ईशानी कौन सी क्लास में है और वो पढ़ाई में कैसी है?
0: पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अपना काम टाइम से निपटा लेती है, 5th क्लास में है,
1: अच्छा
0: आई है 5th क्लास में
1: फिफ्थ
0: अब।
1: में आई है।
0: जी
1: ईशानी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है?
0: ईशानी भी मैंगो ही ज्यादा खाती है।
1: उसको जो वेजिटेबल है वो कौन सी ना पसंद है?
0: सब्जी में तो बहुत वो करती है, आलू टमाटर ज्यादा खाती है, पूरी आलू टमाटर।
1: फेवरेट आलू है, बाकी ग्रीन सब्जियां कोई भी पसंद नहीं है, है?
0: कम खाती है, साग बहुत खाती है।
1: अच्छा अच्छा, ईशानी को कार्टून देखने पसंद है?
0: नहीं, कार्टून तो ज्यादा नहीं देखती, वो राधा कृष्ण वाला सीरियल है क्या, वो देखती।
1: अच्छा
0: है।
1: नानी पोती दोनों धार्मिक हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ईशानी को। अच्छा, ईशानी के पास कितने सारे टॉयज हैं आप हमें ये भी बताएं? टॉयज से खेलती है, खिलौनों से?
0: हैं, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिलता, कभी कभी खेलती है। डॉल्स हैं जो उनसे खेल लेती है कभी कभी।
1: डॉल पसंद होंगे ईशानी को? अच्छा, नानी दादी कहानियां सुनाती थी, क्या पसंद है ईशानी को नानी से कहानियां सुनना?
2: जी
1: पसंद है
2: जी।
1: अच्छा,
0: कौन सी वाली?
1: कबूतर वाली। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और बताएं हमें ईशानी के बारे में कि ईशानी मेकअप शेकअप भी करती है क्या?
0: बहुत ज्यादा। अच्छा। नहीं, अपना नहीं करती, मेकअप करने का शौक है। मम्मी को पकड़ेगी, मम्मी मैं आपका मेकअप करती हूँ, मेरे लिए भी करना शुरू कर देती है कभी कभी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका मन लगा के रखती है ईशानी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है
0: जी।
1: अच्छा, अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, दोनों को एक ही सॉन्ग जो पसंद आता हो।
0: एक साथ कोई नहीं गाते, आते हैं वो
2: भजन आरती कुंज बिहारी।
0: आर

0: लाला बजे मुरजन मदल दंदन ग्वाल नीसन अतुल लति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
1: बहुत सुंदर
0: कृष्ण मुरारी,
2: बहुत प्यारा भजन आप दोनों की आवाज में। आपकी आवाज दोनों की बहुत सुंदर है, मन कर रहा है कि बस आपको सुनते ही रहें। तो आप अपने पसंद का एक भजन और सुनाइए हमें और हमारे श्रोताओं को।

0: आप दोनों की आवाज बहुत प्यारी है, बहुत मधुर भजन आप लोगों ने हम सबके लिए सुनाया। आशा करती हूँ सभी को बहुत पसंद आया। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बातें जानकर बहुत सुखद एहसास हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे ईशानी की तरह संस्कारी हों। आजकल हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं पदभ्रष्ट हो गया है, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। उसमें हम बच्चे की कमी नहीं कहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है। हमारे परिवार में वो अच्छे संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ईशानी की तरह हो और सभी लोग नानी की तरह हो, अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को दें, तो हमारा भारत फिर दोबारा से उसी भारतीय संस्कृति में आ जाएगा। हम सब बड़े परिवारों के साथ मिलजुल कर प्यार के साथ रहेंगे, मैं ऐसी कामना करती हूँ।
1: जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं, भारत संस्कार की तरफ अग्रसरित हो।
0: बिल्कुल, हमारे आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को संस्कारों की बहुत जरूरत है। जी, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी, बहुत
2: धन्यवाद।
0: रिश्तों का सही संतुलन यही है, ना इतना झुके कि अपना अस्तित्व खो दें, ना इतना अकड़े कि अपने को खो दें। जहां प्रेम हो वहां सम्मान हो, जहां अधिकार हो वहां जिम्मेदारी हो, और जहां मतभेद हो वहां संवाद हो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता केवल पैसा या पद नहीं है, असली सफलता तो तब है जब हमारे पास ऐसे रिश्ते हों जहां हम बिना डरे अपने मन की बात कह सके और अपनी खुशियां बांट सके, और मुश्किल समय में यह महसूस कर सके कि कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। श्रोताओं, रिश्तों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम कुछ माटी की कुछ कुम्हार की आपने सुना, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और अब समय हो गया अपनी वाणी को विराम देने का, परंतु आप हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमें ढेरों पत्र लिखें, अपनी शिकायतें और सुझाव लिखें इस पते पर, कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467। और इसी के साथ अपने साथी ज्योति को कार्यक्रम सम्पन्न करने की दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लोकधारा कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंजाबी लोकगीत कलाकार हैं गुरदास मान।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाबी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं गुरदास मान।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

0: सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी एंड बालाघाट। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: Following severe flooding in Nepal and heavy rainfall in the catchment areas, the water levels of the Gandak and Kosi rivers have risen in Bihar. To regulate the river flow, all 36 gates of the Valmiki Nagar barrage and 25 of the 56 gates of the Birpur barrage at Kosi have been opened. In football, India under-20 men's national team will begin their AFC under-20 Asian Cup 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dostlik Stadium in Tashkent today. Drawn in Group B alongside hosts Uzbekistan and Bangladesh, India enter the qualifiers with the objective of returning to the AFC Under-20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
4: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
2: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
5: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
7: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप पूर्ण रखें कि आपकी सोच

0: को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
1: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20%, अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर News on AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से

0: वैष्णवी। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371-7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम नई फिल्मों से में। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म स्त्री 2 से। गायक कलाकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, शिल्पा राव और साथी। गीत और संगीत अमिताभ भट्टाचार्य का है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म जवान का ये गीत, अरिजीत सिंह, शिल्पा राव और साथियों के स्वर में। गीत कुमार का है और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र का है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में टाइगर 3 फिल्म का एक गीत। गीत के लिए शब्द रचना है इरशाद कामिल की और संगीत प्रीतम का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं ओ माय गॉड 2 फिल्म का गीत हंसराज रघुवंशी के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म डंकी का गीत। गीत के लिए शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की है और संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का है।

अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म डंकी में। कार्यक्रम में आप सुनते हैं श्रेया घोषाल को फिल्म सैयारा में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत फहीम और साथियों का है।

अभी आपने श्रेया घोषाल को सुना फिल्म सैयारा में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार के युगल स्वर में, फिल्म बॉर्डर 2 से।

फिल्म बॉर्डर 2 के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण सभा के साथ शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सरकार समय समय पर अपने देश के हर वर्ग के नागरिकों को लाभ देने के उद्देश्य से अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से कोशिश करती है कि हर वर्ग के नागरिकों को लाभ दिया जा सके, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा

सकी। इसी क्रम में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, और इसी संदर्भ में आज हम कार्यक्रम में आपके लिए जानकारी लाए हैं। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ई नाम के विषय में जानकारी। साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि को टिकाऊ बनाना राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करना, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देना और कृषि में आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाना भी बहुत आवश्यक है, और इसी दिशा में जैविक खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आई है। जैविक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता मिलती है, और किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद भी प्राप्त हो सकते हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि जैविक खेती क्या होती है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं और स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए फसल उत्पादन किया जाता है। इसमें मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने के लिए जैविक खाद का प्रयोग, फसल चक्र, मिश्रित खेती, जैविक कीट नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। जैविक खेती का उद्देश्य केवल रसायनों का उपयोग बंद करना ही नहीं है, बल्कि मिट्टी, जल, पौधों, पशुओं और मानव स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करना भी है। साथियों, बात आती है किसानों की आय और जैविक खेती का क्या संबंध है। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं, आमदनी बढ़ाना और लागत घटाना। जैविक खेती इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पहले बात कर लेते हैं कि खेती की लागत में किस तरह कमी हो सकती है। तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर किसानों का काफ़ी खर्च होता है। जैविक खेती में गोबर, फसल अवशेष, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे बाहरी कृषि इनपुट पर निर्भरता कम हो सकती है। उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ने के कारण जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, और ऐसे में प्रमाणित जैविक उत्पादों को बाजार में सामान्य उत्पादों की तुलना में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है। जैविक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। साथ ही जैविक खेती को केवल एक फसल चक्र तक सीमित रखने की बजाय किसान फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों से जोड़कर आय के अनेक स्रोतों को भी विकसित कर सकता है। भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने का प्रयास किया है। इसमें विशेष रूप से परंपरागत कृषि विकास योजना और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट उल्लेखनीय है। तो श्रोताओं, इस तरह से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सरकार हमारे किसानों को पूरी तरह से जागरूक करना चाहती है, जिससे कि वो जैविक खेती को अपनाएं और अपना जो फसल चक्र है उसको भी सही बनाएं। इसके बाद श्रोताओं, बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ई नाम की। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। अगर हम कहें किसान ही हमारे अन्नदाता हैं,
लेकिन किसान वर्ष भर मेहनत करके गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद तैयार करता है। लेकिन कई बार साथियों होता क्या है कि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। स्थानीय मंडियों में सीमित खरीदार, बिचौलियों की भूमिका, बाजार की जानकारी का अभाव, परिवहन की कठिनाइयां और अलग अलग मंडियों में कीमतों में अंतर जैसी समस्याएं किसानों की आय को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने और कृषि उपज के लिए एक व्यापक और पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की। ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जो विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों को ऑनलाइन जोड़कर किसानों और खरीदारों को बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ई नाम का उद्देश्य केवल कृषि उपज को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देना नहीं है, बल्कि कृषि विपणन व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, बेहतर मूल्य खोज और किसानों की बाजार तक पहुंच को मजबूत करना भी है। साथियों, ई नाम कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस योजना के माध्यम से देश की विभिन्न विनियमित कृषि मंडियों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि किसान अपनी कृषि उपज को केवल स्थानीय व्यापारियों तक सीमित न रखकर व्यापक बाजार में बेचने के अवसर प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था में कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बोली लगाई जा सकती है और उपलब्ध बाजार जानकारी के आधार पर किसान अपनी उपज के बेहतर मूल्य की संभावना तलाश कर सकता है। ई नाम की शुरुआत साथियों 14 अप्रैल 2016 को की गई थी और इसकी शुरुआत किसानों को कृषि उपज के लिए बेहतर और पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। आइए जानते हैं कि ई नाम कैसे काम करता है। इस प्रणाली में सबसे पहले किसान अपनी कृषि उपज को संबंधित ई नाम से जुड़ी मंडी में लेकर आता है। मंडी में उसकी उपज की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी गुणवत्ता परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद कृषि उपज का विवरण डिजिटल प्रणाली में दर्ज किया जाता है और फिर पंजीकृत खरीदार उस उपज के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कीमत निर्धारित होने के बाद सफल बोलीदाता को उपज खरीदने का अवसर मिलता है। श्रोताओं, अगर हम बात करें कि ई नाम भारत में कृषि क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप यह कृषि बाजार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाता है। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसान बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करता है तो शायद गलत नहीं होगा। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, डिजिटल भुगतान, मोबाइल तकनीक, मौसम संबंधी जानकारी, उपग्रह आधारित कृषि सेवाएं और डिजिटल बाजार किसानों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। साथियों, ये थी जानकारी ई नाम योजना के बारे में और इसके साथ ही मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं, आज रात 9:30 बजे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय है नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या नया संवाद। वार्ताकार हैं डॉक्टर शुभा माहेश्वरी। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज का क्रम है गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और लव स्टोरी। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:05 पर डॉक्टर सौरभ दुबे से की गई बातचीत का विषय होगा मूंगफली में समसामयिक कार्य, और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रासायनिक उर्वरकों की दुष्प्रभाव। सुगम संगीत में 7:32 पर श्रोता सुनेंगे प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन, और फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8:00 होगा कार्यक्रम गीत संध्या। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा रात 10:00, और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 10:30। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब श्रोताओं, हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कल रात 10 बजे। रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कवि गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी होंगे राजीव उपाध्याय, सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और नरेंद्र वर्मा। संचालन करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन हेतु मुख्य शस्य क्रियाएं, इस विषय पर डॉक्टर रितेश शर्मा से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय होगा जिगर के सामान्य रोग और उपचार। धरती गाती है कार्यक्रम में 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे सुभाष चंद्र और साथियों के स्वर में रागनी। महिला जगत कार्यक्रम में 1:15

पर बहनें सुनेंगी मनु श्वेता का काव्य पाठ, और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, उज्मा के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली। दोस्तों आज है मंडे और मंडे को हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही शानदार शानदार सेगमेंट्स।
0: दोस्तों जिनमें से पहला है आज का यानी कि मंडे की शान गपशप अड्डा, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फोन नंबर 9457078288 के साथ और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत।
1: और आज आप सुनेंगे क्रैश कोर्स पैसा वसूल के अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप,
0: और साथ ही हम आपको सुनवाएंगे रहस्य सीरीज का सीजन 2 तलाश और एपिसोड नंबर रहेगा 6।
1: और साथ ही आज से शुरू होगी लव स्टोरी जिसका एपिसोड होगा 1 और टाइटल होगा दास्तान ए मोहब्बत।
0: लेकिन उससे पहले आपको देना होगा हमारे एक सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब।
1: बिल्कुल, और आज हमारा बूझो तो जाने के अंतर्गत आपसे सवाल है कि हाल ही में चर्चित वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का निर्देशन किसने किया,
0: और जिसका सही जवाब आपको देना होगा हमारे FB पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
1: और सही जवाब देने वालों के नामों को करेंगे हम प्रोग्राम में शामिल।
0: तो दोस्तों अब वक्त हो रहा है कुछ जानकारी लेने का, और ये जानकारी हमें मिलेगी कहाँ, बताओ शैली कहाँ मिल सकती है?
1: क्रैश कोर्स।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं आप और हम मिलकर हमारा सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल।
1: तो दोस्तों अब है टाइम मंडे स्पेशल सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल का, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो साइज में बहुत छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंस में बहुत बड़ी, सेमीकंडक्टर चिप। आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच पहनी है, UPI पेमेंट कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं, AI से बात कर पा रहे हैं, या सैटेलाइट स्पेस में काम कर रहा है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सेमीकंडक्टर चिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। लेकिन जरूरी क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन के एक टाइनी पीस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसको एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक स्विच समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जब मिलियंस या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे सिलिकॉन पीस पर इंटीग्रेट किया जाता है तो बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, और कॉमनली इसी IC को हम चिप कहते हैं। ये चिप मेनली तीन इंपॉर्टेंट काम करती है, पहला डेटा को प्रोसेस करना, दूसरा डेटा को स्टोर करना, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कंट्रोल करना, जैसे फोन में फोटो ओपन करना, गेम खेलना, वीडियोस एडिट करना, AI का यूज करना, या फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप इन टास्क को हैंडल करते हैं। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्मार्टफोन्स पर नहीं पड़ेगा बल्कि कार्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम नेटवर्क, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, AI सिस्टम्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक इम्पैक्ट हो सकता है। कोविड के टाइम सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ने दुनिया को ये समझाया कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट इनफ नहीं है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन भी सिक्योर होनी चाहिए। इसी वजह से सेमीकंडक्टर को स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री जो किसी

0: कंट्री की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी स्टोरी कोई नई नहीं है। इंडिया हिस्टोरिकली चिप डिजाइन में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इंडियन इंजीनियर्स दुनिया भर की सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए चिप डिजाइन और रिसर्च डेवलपमेंट में काम करते आए हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन टैलेंट का नियरली 20% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब इंडिया का टारगेट सिर्फ डिजाइन तक लिमिटेड रहना नहीं है, टारगेट है डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना। इसी डायरेक्शन में जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ चिप डिजाइन करना नहीं है, बल्कि फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना है। 2026 तक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुका है, जो अलग अलग शहरों में होंगे। जो शहर हैं गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। जुलाई 2026 में गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया 2.0 अप्रूव किया, जिसका आउटले है 1,27,500 करोड़ रुपए। इसका फोकस सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने पर नहीं, बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करना है। अब जानते हैं कि इंडिया को इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसके बेनिफिट्स होंगे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, AI, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं, 5G, टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी, सब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर हाईली डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर चिप शायद आपके फिंगर नेल से भी छोटी हो, लेकिन इसके अंदर AI, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, 5G, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड डिजिटल इकोनॉमी, सबका फ्यूचर छुपा हुआ है। इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर स्टोरी सिर्फ एक इंडस्ट्री की स्टोरी नहीं है, ये है आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी, ये है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की स्टोरी, और यही है इंडिया की सेमीकंडक्टर स्टोरी।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आशा कर लोट को,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे मंटू, इतना दुखी क्यों है?
5: अरे भाई, बस मंदिर गया था।
3: क्या करने?
5: अरे मेरी वही प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही ना, उसी की दुआ मांगने गया था।
3: अच्छा, तो क्या हुआ?
5: अरे भाई, बाहर आया तो जूते चोरी की रस्म हो चुकी थी।
3: और वो कैसे?
5: अरे मंदिर से दुआ मांग के बाहर निकला तो कोई जूते ही चुरा के ले गया मेरे।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
6: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
7: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
6: अरे वही अपना 60 रुपया।
7: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
6: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
7: और दूसरा?
6: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
7: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
6: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
0: तो दोस्तों, अब टाइम है हमारे मंडे स्पेशल सेगमेंट को स्टार्ट करने का, जिसका नाम है
3: गपशप अड्डा। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा में, तो हमें कॉल करिए हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9457078288।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: तो चलो शैली, देखते हैं कि हमारे पहले साथी जो है हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं।
4: हेलो हेलो हेलो हेलो सर। हेलो उस्मान, लग रहा है कि किसी वजह से हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो, तो चलो उस्मान एक काम करते हैं, कॉल को साइड करके अब शुरुआत कर देते हैं अपने डेली सेगमेंट कुछ खास है आज की। तो दोस्तों, कुछ खास है आज में एक जो दिन है, इस ऐसी प्रॉब्लम के बारे में है जिस दिन के बारे में सभी को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
3: बिल्कुल, और जो है आज का हमारा जो दिन है वो है ओवरडोज अवेयरनेस डे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ओवरडोज एक्चुअली होता क्या है।
4: सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब कोई जो मेडिसिन ड्रग या फिर दूसरा सब्सटेंस बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाता है एंड बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डेंजरसली अफेक्ट होने लगते हैं, उसे कहते हैं ओवरडोज।
3: ओवरडोज का इफेक्ट हर सब्सटेंस पर डिफरेंट हो सकता है। कुछ केसेस में ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और कॉन्शियसनेस जैसे वाइटल फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से ओवरडोज एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है।
4: इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की डोज खुद से इंक्रीज कर देना, और दूसरा मेडिसिन को बिना मेडिकल एडवाइस के ले लेना, या किसी सब्सटेंस की जो स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी है उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना होना।
3: कभी कभी बॉडी की टॉलरेंस में भी चेंज इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए किसी सब्सटेंस को अगर आपने पहले लिया है और आपकी बॉडी ने उसे टॉलरेट कर लिया है तो इसकी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही अमाउंट आपकी बॉडी के लिए सेफ होगा।
4: और दोस्तों, अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वार्निंग साइन को सीरियसली लेना।
3: और अगर कोई पर्सन अनयूजली कंफ्यूज्ड हो, रेस्पॉन्ड ना कर रहा हो, बेहोशी जैसी कंडीशन में लगे या उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल ना लग रही हो तो वेट एंड वॉच करना बिल्कुल सही नहीं है। इमीडिएटली इमरजेंसी मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए।
4: और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरडोज से जुड़ी सिचुएशन में स्टिग्मा और जजमेंट नहीं, टाइमली मेडिकल हेल्प सबसे इंपॉर्टेंट है।
3: और 2026 में इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे की थीम है 25 इयर्स ऑन स्टिल नीडेड, यानी 25 साल बाद भी इसकी जरूरत है।
4: तो दोस्तों, एक मैसेज याद रखिए, राइट इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज और टाइमली हेल्प,
3: ये तीन चीजें किसी इमरजेंसी को और ज्यादा सीरियस होने से रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
4: तो दोस्तों, अब सुनते हैं स्पेशल रहस्य सीरीज का सीजन 2 जिसका टाइटल है तलाश, और आज है एपिसोड नंबर 6 जिसके आलेख एंड प्रस्तुति सहयोग हैं मोहम्मद आदिल सैफी।
5: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है तलाश और ये है रहस्य सीरीज की आखिरी कड़ी यानी एपिसोड नंबर 6।

और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 23 नवंबर सन 2011 में। उस दिन पुणे के पास मुशली नाम के इलाके में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को झाड़ियों में इन्वेस्टिगेटर कबीर का खून से लथपथ शरीर मिलता है। सामने का खौफनाक नजारा देखकर बच्चा चीख पड़ता है और मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग कबीर को पूरी तरह मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन तभी कबीर की उंगलियों में हरकत होती है। कबीर को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान कबीर को सिंडिकेट के उसी जानलेवा हमले के खौफनाक फ्लैशबैक्स आते हैं और कबीर एक दर्दनाक चीख के साथ होश में आ जाता है। होश में आते ही कबीर समझ जाता है कि बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही है। कबीर समझ जाता है कि अगर पुलिस बीच में आई तो अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को कबीर के जिंदा होने की खबर लग जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए कबीर सारा खुफिया सामान उठाता है और अस्पताल की खिड़की से पाइप के सहारे भाग निकलता है। वहां से कबीर घने जंगलों में छिपे अपने हाईटेक सीक्रेट बेस पर पहुंचता है। कबीर का सारा डेटा सुरक्षित था, लेकिन सिंडिकेट ने कबीर की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। कबीर तुरंत डेटा बैकअप करके बेस को तबाह करने का कमांड देता है। अब दोबारा से सबूत ढूंढने कबीर उसी सिंडिकेट के पुराने गोदाम में पहुंच जाता है जहां कबीर पर पहले भी हमला हुआ था, लेकिन गोदाम पूरी तरह खाली था। कबीर कुछ समझ पाता तभी अंधेरे से किसी ने कबीर के सिर पर लोहे की भारी रॉड से जोरदार वार कर दिया। कबीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और एक बार फिर कबीर खौफनाक अंधेरे में डूब चुका था। सवाल यह था कि आखिर दोबारा से जब वहां पर कोई नहीं था तो कबीर पर वार किसने किया? मौत का साया कबीर के इर्द गिर्द मंडरा रहा था जब धीरे धीरे कबीर की चेतना लौटी और कबीर को होश आया तो सिर में दर्द का एक भयानक बवंडर उठ रहा था। आंखें खुलने पर कबीर ने महसूस किया कि उसको एक बिल्कुल अनजान और खौफनाक जगह पर लोहे की एक भारी कुर्सी से मोटी रस्सियों के जरिए बहुत मजबूती से बांधा गया था। कबीर के चेहरे पर ठीक सामने से एक बहुत ही तेज चुभती हुई सफेद रोशनी पड़ रही थी जिससे सामने का सारा नजारा धुंधला और डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद गहरे अंधेरे को चीरते हुए भारी कदमों की आहट हुई और एक विशाल शख्स रोशनी के दायरे में आकर खड़ा हो गया। सामने खड़े शख्स ने धीरे से चेहरे से नकाब उतारा। नकाब उतारते ही उस सामने खड़े इंसान का चेहरा देखकर कबीर अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। सामने कोई और नहीं बल्कि उसी अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का सबसे बड़ा और खूंखार बॉस खड़ा था, यानी अंडरवर्ल्ड डॉन रघु, जिसकी तलाश में कबीर मौत के मुहाने तक पहुंच चुका था और जिस पर लाखों का इनाम था। बॉस के ठीक पीछे सिंडिकेट के बाकी अहम पार्टनर्स और खतरनाक गुंडे भी अपने अपने हथियार ताने खड़े थे। कमरे का माहौल बेहद खौफनाक और तनावपूर्ण हो चुका था। बॉस ने कबीर को लाचार हालत में कुर्सी से बंधा देखकर जोर जोर से हंसना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बॉस ने बहुत ही ड्रामेटिक और गुरूर भरे अंदाज में कबीर को ताने मारते हुए कहा कि तुम जैसे दो कौड़ी के डिटेक्टिव चंद रुपयों की खातिर अपनी जान दांव पर लगा देते हो। तुम लोगों की औकात ही क्या है? जितने पैसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करके नहीं कमा सकते, उतने पैसे तो मैं हर रोज अपने गैंग में बांट देता हूं। बॉस का गुरूर सातवें आसमान पर था। बॉस को लग रहा था कि कबीर की जिंदगी अब पूरी तरह बॉस के रहम करम पर है, लेकिन कबीर के चेहरे पर मौत या खौफ की एक भी लकीर नहीं थी। कबीर बिल्कुल खामोशी से बॉस की सारी बकवास और धमकियों को सुन रहा था। तभी अचानक गोदाम के बाहर से पुलिस की दर्जनों गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। सायरन की आवाज तेजी से पास आती जा रही थी। पुलिस का सायरन सुनते ही सिंडिकेट के गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया और पूरी गैंग में भयानक भगदड़ मच गई। पुलिस की भारी फोर्स ने चारों तरफ से पूरे खुफिया ठिकाने पर रेड कर दी थी। सिंडिकेट का बॉस पसीने से तर बतर हो गया था और घबराकर चिल्लाने लगा था। उसके मन में यही सवाल था कि आखिर पुलिस को सीक्रेट ठिकाने का पता आखिर कैसे चला। तब कबीर ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। कबीर की आंखों में अब खामोशी नहीं बल्कि अंगारों जैसी आग थी। कबीर ने एक बेहद दमदार और भारी और रौबदार आवाज में पुलिस को जवाब दिया,
मैं चंद रुपयों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। मैं अपने देश के लिए जीता हूं और अपने देश के लिए ही मरूंगा। कबीर ने अपनी असल पहचान से पर्दा उठाते हुए कहा, मैं कोई आम डिटेक्टिव कबीर नहीं हूं, बल्कि मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक अंडरवर्ल्ड स्पेशल एजेंट हूं। मेरा असली नाम है कमांडो विजय। पुलिस के वहां पहुंचने का सबसे बड़ा राज खोलते ही कमांडो विजय ने बताया कि जब विजय को कुर्सी पर होश आया था, तभी विजय ने अपने पैर की उंगलियों के बीच जूते में छिपे एक बेहद छोटे और एडवांस लोकेशन ट्रैकर बटन को दबाकर एक्टिवेट कर दिया था। इसी वजह से अननोन लोकेशन का सिग्नल मिलते ही पुलिस की पूरी फौज सीधा तुम्हारे अड्डे पर पहुंच गई। कमांडो विजय ने बॉस रघु की आंखों में आंखें डालकर आखिरी चेतावनी दी कि समाज के दुश्मनों, देशद्रोहियों और तस्करों के पूरे जाल को जड़ से उखाड़ फेंकना ही उसका एक इकलौता मकसद है। कुछ ही देरी में पुलिस ने पूरे सिंडिकेट को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक दमदार गर्व से भरे जय हिंद जय भारत के नारों के साथ कमांडो विजय का एक बेहद खौफनाक और नामुमकिन मिशन कामयाबी के साथ पूरा हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। जय हिंद जय भारत।

0: तो चलो शैली, वक्त हो चला है हमारे अगले साथी से मिलने का, तो देख लेते हैं कि हमारे अगले साथी कौन है जो हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी सर, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी, आपका भाई मांगीलाल चंदेल बात कर रहा हूँ।
0: जी मांगेलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हो।
0: जी, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और आप अच्छे हैं ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो बताइए कि आप प्रोग्राम
1: जी,
0: सुन रहे थे, कैसा लगा आपको प्रोग्राम?
1: बहुत बढ़िया लगा मैम, बहुत बढ़िया लगा। आपका तो प्रोग्राम बहुत सुपर जाता है जब आप आती हैं
0: जी
1: तो।
0: जी सर, थैंक यू सो मच। आपको
1: जी
0: प्रोग्राम अच्छा
1: जी
0: लगता है, हम इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसे एंजॉय कर पाए, और
1: जी
0: आप कर
1: देखो,
0: रहे हैं
1: सही
0: तो
1: है,
0: मेहनत
1: मेहनत
0: सफल हो गई।
1: सफल हो गई आपकी मेहनत। मेहनत से जो कोई भी काम हुआ बहन जी, मेहनत से ही सफल होता
0: जी जी बिल्कुल सही बात है आपकी, मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करेंगे तो काम
1: जी।
0: हमारा जरूर सफल होगा।
1: देखो हम कब से लगा रहे हैं, 10-15 मिनट पहले से लगा रहे हैं। मेहनत नहीं करते तो कैसे आपसे बात होती है?
0: जी
1: मेहनत
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: करना
0: बात है
1: पड़ती है, कोई भी काम हुआ, कोई भी काम
0: जी
1: हुआ,
0: मांगेलाल जी, बिल्कुल
1: मेहनत
0: ठीक कहा
1: चाहिए।
0: आपने। और अब मुझे लगता है कि आपकी मेहनत के फल मिलने का टाइम हो चुका है, तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है खानदान,
0: जी,
1: और
0: और
1: सॉन्ग के बोल है, बड़ी देर वही नंदलाला,
0: बहुत
1: तेरी
0: हो
1: राय
0: जी
1: तक है ब्रजवाला।
0: जी जी चलिए तो
1: क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी कि ये गाना जरूर पक्का किसी ना किसी ओकेजन पे तो जरूर बताया गया है।
1: तो बस भगवान की इंतजार चल रहा
0: जी
1: है,
0: जी बिल्कुल,
1: कब आए
0: तो
1: प्रभु कृष्ण
0: चलिए
1: भगवान,
0: आपके
1: कब
0: इंतजार को थोड़ा आसान कर देते हैं। आप सुनिए प्रभु के
1: आए।
0: नाम पर ये गाना, और अपने सब साथियों को हम सुनवाते हैं आपके
1: बहन
0: पसंद
1: जी,
0: का
1: तो
0: ये
1: मैं
0: सॉन्ग।
1: कुछ
0: जी
1: साथियों को याद
0: बिल्कुल
1: कर
0: बिल्कुल
1: सकता हूँ ना।
0: बिल्कुल
1: नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, और मोहम्मद बक्कार फरीदी जी हैं, मकसूद हुसैन भाई साहब हैं मुरादाबाद से, और विष्णु अग्रवाल जी हैं, राजा हुसैन जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा बहन जी।
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: सर, तो चलिए सुनते हैं आपके और आपकी साथियों की फरमाइश पर ये गीत। तो कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: अंकल नमस्ते।
6: नमस्ते बेटा, कैसी हो?
5: मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताएं।
6: अरे हम भी बढ़िया है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी?
5: अंकल पढ़ाई के पैर में ना दर्द है, इसलिए चल वल नहीं रही है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
7: दोस्तों, कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस अचानक शुरू हो जाती हैं। एक अनजान मुलाकात, एक छोटी सी मुस्कान, और फिर धीरे धीरे कोई हमारी ज़िंदगी का खास हिस्सा बन जाता है। ऐसी ही है हमारी लव स्टोरी, जिसका आप सुनेंगे आज पहला हिस्सा। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं इस स्टोरी को, जिसका टाइटल है दास्तान मोहब्बत और एपिसोड 1।
8: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
7: कहते हैं मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, ना कोई उम्र, ना कोई तारीख, और ना ही कोई तय वक्त। कभी किसी की आवाज़ बरसों तक कानों में ठहरी रहती है, और कभी वो लोग पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से मोहब्बत करते रहते हैं मगर अपने दिल की बात कह नहीं पाते। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और आज से हम शुरू कर रहे हैं ऐसी ही एक दास्तान, जिसका नाम है दास्तान मोहब्बत। एक ऐसे दौर की मोहब्बत जहां मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं होती थी, जहां मुलाकातों का इंतज़ार हुआ करता था और बातों में लिहाज हुआ करता था, और नज़रों में भी एक पूरा इकरार छिपा होता था। तो आइए चलते हैं सन 1942 के उस दौर में, जहां एक पुरानी हवेली के दरवाजे के पीछे एक ऐसी ही कहानी जन्म लेने वाली थी, जिसका जिक्र बरसों बाद भी बाकी रहने वाला था। शहर के पुराने हिस्से में एक आलीशान हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, आंगन के बीचों बीच पुराना नीम का पेड़, और शाम होते ही रोशन होने वाले पीतल के दिए। इस हवेली की शान और अख्तर साहब की जान जोहरा शाम होते ही सारे दिए रोशन कर देती। उसकी असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी तहजीब में थी। बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत, यही उसकी पहचान थी। अख्तर साहब जानते थे कि उनकी लाडली बेटी को किताबों का बेहद शौक था, इसलिए वो अक्सर उसके लिए नई नई किताबें लाते। एक दिन जोहरा ने अख्तर साहब से लाइब्रेरी जाने की इजाजत मांगी, जो घर से थोड़ी ही दूरी पर थी, मगर बात किताबों की थी तो इजाजत मिल भी गई। एक दिन जोहरा लाइब्रेरी में एक किताब तलाशते तलाशते लाइब्रेरी के सबसे खाली हिस्से में जा पहुंची, जहाँ किताबें तो अनगिनत थी मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। उसकी नजर ऊपर रखी उस किताब पर गई जिसकी उसे तलाश थी, मगर वो जोहरा की पहुंच से बहुत दूर थी। वो बार बार उठकर किताब उठाने की कोशिश करती मगर पहुंच न पाती। तभी पीछे से आवाज आई, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। सोहरा पलटी, सामने साहिल खड़ा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर साहिल ने अपनी नजरें झुका ली। जोहरा पीछे हटी, साहिल ने किताब उतारी और उसकी तरफ बढ़ा दी। जोहरा ने किताब लेते हुए कहा, बहुत शुक्रिया। साहिल मुस्कुराया और बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। जोहरा ने फिर उसकी तरफ गौर से देखा और बोली, जनाब हर किसी में मदद करने का सलीका नहीं होता। साहिल ने जवाब दिया, और हर किसी में शुक्रिया कहने का भी नहीं। जोहरा हल्का मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपनी अपनी किताबें लेकर अलग अलग हो गए। मुलाकात कुछ ही मिनटों की थी, मगर कभी कभी कुछ मुलाकातें वक्त से नहीं दिल से याद रखी जाती है। उस दिन घर लौटते हुए जोहरा के हाथ में वही किताबें थी, लेकिन उसके ख्याल में किताबें नहीं थी। उधर साहिल भी घर पहुँच कर अपनी किताबें खोल चुका था, मगर आज पहली बार अल्फाज सामने थे और उसका ध्यान कहीं और। उसने किताब बंद की और खुद से कहा, अजीब लड़की थी, ध्यान से जा ही नहीं रही है। फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे क्या मालूम था कि ये मुलाकात आखिरी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान की शुरुआत थी जिसका अंजाम दोनों में से किसी को मालूम नहीं था। दोस्तों, आज की इस दास्तान का ये पहला हिस्सा यहीं ठहरता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों की अगली मुलाकात कब, कैसे और कहां होगी, तो कल सुनना ना भूले दास्तान मोहब्बत का अगला एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 2।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
7: शैली, जैसे हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था अपने दोस्तों से बूझो तो जाने के अंतर्गत एक सवाल,
6: और सवाल था कि हाल ही में चर्चित वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो का निर्देशन किसने किया, जिसका सही जवाब है अविनाश अरुण ने।
7: और सही जवाब देने वालों के नाम है सुदर्शन शाह, पुंजा जी, नावहेलकर, राहुल पाल, धर्मेंद्र छीपा, वीरेंद्र और हीरा मणि वर्मा, दिनेश वर्मा, जॉन्डी कैस्ट्रो, अशोक सिंह, गजानन येले, गंगा सिंह रावत, बबलेश पवार, नंद, और अगले हैं बीआई धाकड़, हमारे अगले दोस्त हैं जगदीश धाकड़, राम कुमार रेवाड़, मसरूर हसन, फागुराम यादव, आर्यन राज, शिव, दिग्दर्शन गौड़, मोहम्मद असलम, बलवंत कुमार, और हमारे अगले साथी हैं ताज अंसारी, सदाशिव थोरात, लाल मोहम्मद अंसारी, अनिल बी कोटके, जाकिर मंसूरी, रतनदीप आर्या, आफ्ताब अंसारी, मुजफ्फर अली खान, रविंद्र दास, धीरज भाई राबड़ी, राजेश वर्मा, गजानन येले, शमशुल कमर हुकुम, और हमारे अगले साथी हैं शाहजी भोड़के, नदीम बाकी, मोहम्मद दानिस सिद्दीकी, नवाजुद्दीन, और हमारे अगले साथी हैं विट्टल सुरेशे।
6: उज्मा, मुझे लगता है कि हमारे और साथियों के नाम हमें आगे प्रोग्राम के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें इंगेज भी तो रखना है प्रोग्राम से। तो अब लेते हैं हमारी अगली कॉल और देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है हमसे बात करने के लिए बेताब। हेलो,
9: हेलो
6: जी सर, कौन बात कर रहे हैं?
9: नमस्ते दीदी।
7: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
9: मैं कश्मीर सोना मरक से लतीफ अहमद रेना।
7: जी लतीफ जी, कैसे हैं आप?
9: बहुत अच्छा है, आप ठीक है मैडम?
7: जी बिल्कुल, आप बताइए, आज आपकी कॉल लगी है प्रोग्राम में, आपको कैसा लग रहा है?
9: बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ प्रोग्राम से, बहुत निजी बाबा से प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ।
7: जी जैसे कि आपने
9: पत्र के लिए धन्यवाद भी सुनता हूँ।
7: जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ जी, आपने बताया कि आप सोनमर्ग से बात कर रहे हैं, तो सोनमर्ग का मौसम आज कैसा है?
9: आज सुहाना मौसम है, लगभग 3 बजे से थोड़ा थोड़ा बारिश आने लगा है, मौसम तो सुहाना लगा।
7: जी, और बारिश का मौसम हो और
9: उतना ठंडी भी नहीं।
7: बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा मौसम तो मुझे लगता है लगभग हमारे सभी साथी पसंद करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो और बहुत ज्यादा सर्दी भी ना हो। जी तो लतीफ जी बताइए, आज आपका कॉल लगा प्रोग्राम में, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
9: फिल्म का नाम है कुदरत।
7: जी
9: उसका गाना है वो लता मंगेशकर की, आवाज़ सुनिए, और रंगीला कैसा जादू किया।
5: ठीक है चलिए सुनवाते हैं आपकी इस प्यारी सी फरमाइश।
9: मेरे साथ
5: जी जी
9: मेरे साथ अब्दुल गफ्फार दावर।
5: बिल्कुल तो चलिए आपकी और आपके साथियों की जो फरमाइश है हम आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, सवाल का सही जवाब देने वाले हमारे कुछ साथियों के नाम अभी बाकी थे, जिनमें शामिल हैं मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद अफजल ताज, बीपी गौतम, सुरेश गंगनेजा और कमल सिंह, सुरेश शाहरुन नूर अंसारी, मोहम्मद यासीन अनजान, मोहम्मद हुसैन पवार, और हमारे साथी हैं राजकुमार दूधी, मोहम्मद रफीक पवार, मुकेश कश्यप, विनोद नारायण, प्रवीण चौहान और जयपाल यादव, गुरमीत सिंह, अबाब खान, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और हमारे एक और साथी अनिल विनोचा जी।
1: उसमें आप देख लेते हैं कि हमारे अगले साथी कौन हैं जो हमसे कॉल पर बात करने वाले हैं।
0: हेलो,
2: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात कह दी आपने। और ये बात कहने वाले जो हमारे दोस्त हैं, हमें उनका नाम पता चल जाए तो मजा ही आ जाए।
2: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: जी हसीना जी, कैसी हैं आप?
2: अच्छे मैडम, आप कैसे? जी
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अब आपसे बात हो गई तो डबल अच्छे हो गए हैं।
2: शुक्रिया।
0: जी हसीना जी, तो बताइए, आज आपकी कॉल लगी, आप बहुत खुश भी लग रही हैं, तो कौन सा प्यारा सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: मिस्टर नटवरलाल फिल्म का नाम है और गाने के बोले

0: खूबसूरत आवाज है
1: बिल्कुल, जैसा
0: आपकी।
1: आपका नाम है वैसे ही आवाज हसीन है।
2: जी शुक्रिया मैडम, थोड़े सर्दी जुकाम हो रही, तबीयत ठीक नहीं है।
0: जी, तभी भी बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। तो चलिए आपकी पसंद पर, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत। कॉल करने के लिए
2: जी शुक्रिया
0: धन्यवाद।
2: मैडम।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें ख़त के ज़रिए बता सकते हैं, और हमें ख़त भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आज आपने कॉल्स किए 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं जिसका नाम है आकाशवाणी नजीबाबाद। इसी के साथ अपने साथी शैली
0: और उस्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की

0: समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम किसी जगह सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? और भैया कैसी चल रही है थारे हमारे किसान भाइयों की खेती बाड़ी? और देखो भैया, अगर खेती बाड़ी की बात करो तो भैया हमारे जो किसान भाइयों की जो खेती बाड़ी है वो ठीक ठाक चल रही होगी। और देखो भैया, बरसात का जो समय चल रहा है और बारिश भी भैया अच्छी हो रही है, तो भैया बरसात के समय में अपने फसलों की देखभाल हमारे किसान भाई को ज़रूर करनी है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे खेतों में ज़्यादा पानी भर जाता है, और पानी भरे रहने से ना हमारी जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, और भैया उसमें रोग कीट उसमें लग जाते हैं। और अगर भैया हमारे किसान भाई के खेतों में अगर हद से ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो भैया हमारे किसान भाई जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। और भैया देखो उन्हें जल निकासी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, इससे क्या होता है कि जो भैया हमारी फसल है वो बच जाती है। और भैया साथ साथ हमारे किसान भाइयों को अपनी जो फसलों की देखभाल भी करनी है। और भैया जो हमारे किसान भाइयों ने पशु पाल रखे हैं उनका भी भैया हमारे किसान भाइयों को अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि देखो उनकी देखभाल करनी ज़रूरी है। बरसात का समय चल रहा है और भैया देखो बरसात के समय में जल भराव और गंदगी से भैया मच्छर भी और मक्खी भी भैया पैदा होते हैं, और वो हमारे जो पशु हैं उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, तो भैया उनसे अपने पशुओं को बचाना है। और भैया देखो बरसात

आजकल भैया देखो हमारे किसान भाई आज के समय में क्या करते हैं कि धुएं की व्यवस्था कर देते हैं, उस पर नीम की पत्ती डाल देते हैं जिससे हमारे जो पशु हों उन्हें मच्छर मक्खी नहीं लगते हैं। और भैया साथ साथ जो अपनी पशुशाला है उसकी साफ सफाई की विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। अपनी जो पशुशाला में हमें समय समय पर ध्यान देना जरूरी है, उसकी साफ सफाई भी करना जरूरी है। और भैया उसके साथ साथ भैया जो पशुशाला की गंदगी हो उसे भी भैया हमें साफ करते रहना है। और देखो भैया उसके साथ एक काम का और विशेष ध्यान रखना है, जिसमें हमारे जो पशु हो गोद खाते हैं तो उसकी भी साफ सफाई हमें करनी है। तो हमारे किसान भाई इन सब बातों को जब देखभाल करेंगे तो हमारे भैया पशु जो स्वस्थ रहेंगे, और भैया जब पशु स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो दूध उत्पादन वो भी अच्छा होगा। और भैया देखो जब पशु स्वस्थ रहेंगे तो भैया उसके साथ साथ हम अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें भी स्वस्थ रहना है। तो उसके लिए भैया हमारे किसान भाई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और भैया समय समय पर अपने जो कृषि कार्य हैं वो करते रहें। क्योंकि देखो इस समय क्या है कि खरीफ का मौसम है, और खरीफ के मौसम में जो फसल है हमारे खेतों में खड़ी है तो उसमें भैया हमारे किसान भाई को कुछ कुछ कृषि कार्य करने पड़ जरूरी होते हैं, चाहे भैया धान की फसल हो, चाहे वो मक्का की फसल हो, या भैया मूंगफली की फसल हो। तो भैया आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं, और जानकारी का विषय है मूंगफली में समसामयिक कार्य। और भैया इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जो कि कार्यरत हैं कृषि वैज्ञानिक सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं में। तो भैया तो आइए सुनते हैं उनसे की गई हो बातचीत। किसान भाइयों बरसात का समय चल रहा है और बारिश भी अच्छी हो रही है, और खेतों में हमारी फसलें भी खड़ी हैं। और भैया देखो फसलों में हमें बहुत सारे कृषि कार्य समय करने होते हैं, क्योंकि भैया जो कृषि कार्य हमारे किसान भाई करते हैं वो समय समय के अनुसार हमें करने पड़ते हैं। और इस समय की बात करें तो हमारे खेतों में

0: देखिए प्रिय की बात रही हूँ। सबसे पहले तो हमें मूंगफली केक बुआई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि मूंगफली दो समय होती है। अभी हम लोग आज बात करेंगे खरीफ वाली यानी बरसात वाली मूंगफली के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले आपको ये देखना है कि इसकी बुआई कैसे करें, बुआई करते समय खेत कैसे तैयार करना है और खेत के बाद इसकी जो बिजाई है वो किस हिसाब से हमें करनी है। तो सबसे बेहतर जो हम लोगों ने अभी तक निकाला है उसमें मूंगफली एक बहुत अच्छी फसल है, तिलहनी फसल है, एक अच्छे फसल चक्र में आती है कि आपकी फसलों का जो रोटेशन है वो भी चेंज हो जाता है। और इसके बाद इसमें बुआई करने से पहले यदि 1 बीघे आप ले रहे हैं तो 1 बीघे में बहुत कम इसमें खाद की आवश्यकता है। खाद आप मानिए नाइट्रोजन की तो फैक्ट्री है मूंगफली, इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। यदि हम बात करते हैं डीएपी की, 5 से 7 किलो डीएपी या 12-32-16 एनपीके की अगर आप ले रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है क्योंकि आप बुआई के समय डाल सकते हैं। इसके साथ क्योंकि मूंगफली तिलहनी फसल है और हम सभी जानते हैं कि तिलहनी फसल में सल्फर का प्रयोग करने से उसमें तेल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हम 1 से 1.25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ग्रेन्यूलर दानेदार सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आती है बात हमें खेत का प्रयोग करने की, तो मूंगफली एक ऐसी फसल है अधिक उत्पादन इसका किया जाता था, पर समस्या क्या आई हमारे बदायूं क्षेत्र में भी और आसपास के मुरादाबाद संभल के क्षेत्र में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा समस्या आई उकता की। उकता की समस्या के कारण ये मूंगफली का उत्पादन या क्षेत्रफल हमारे क्षेत्र से धीरे धीरे कम हुआ। तो उकता के लिए जो हम किसान भाई ध्यान रख सकते हैं, उकता है यानी फंगस, तो उकता के लिए जो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है भूमि शोधन हम लोग अवश्य कर लें। तो भूमि शोधन के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है, तो ट्राइकोडर्मा के माध्यम से हम लोग भूमि का शोधन कर सकते हैं। आपको सड़ी हुई कच्ची गोबर की खाद लेनी है, गोबर की खाद को अच्छे से ट्राइकोडर्मा में मिला लें और इसके बाद आपको बुआई कर देनी है। यदि आप 1 बीघा ले रहे हैं तो आप 1 से 1.5 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके आप भूमि शोधन कर लीजिए। इसके बाद यदि आप बीज लेते हैं तो बीज भी आप ध्यान रखिए कि आप कार्बेंडाजीन का जो है या थीरम का या किसी अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करके ही उसकी बुआई करें। और बुआई करने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो प्रजाति हम लोगों को लेनी है मूंगफली की वो हम ऐसी प्रजाति लें जो इसमें टिक्का डिसीज या फिर टीपीएम के रेसिस्टेंट जो नई प्रजाति आ गई है, जैसे कि TG26 है, 34 है, TG32 है या फिर और भी कोई हाइब्रिड वेराइटियां जो आजकल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा या फिर अनुसंधान केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, हम ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण मूंगफली की प्रजाति ले सकते हैं। तो उसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि एक बहुत अच्छी इसकी बुआई की विधि जो हम लोगों ने अभी याद करी है, जैसे आप आलू के बेड बनाते हैं तो आलू के बेड बनाते हैं उसी तरीके से या तो आप आलू के प्लांटर बेड वाली मशीन को इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप एक बेड बना लीजिए, बेड के ऊपर इसकी हम बुआई करेंगे। समस्या बरसात की मूंगफली में क्या आती है, एक तो खरपतवार की समस्या सबसे अधिक आती है, दूसरी जल भराव के कारण गलन की समस्या बहुत अधिक इसमें देखने में पाई जाती है जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो आमतौर पर अगर हम समर सीजन की या फिर खराइफ सीजन की मूंगफली लेते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है क्योंकि बरसात के समय इसमें ग्रोथ कम होती है पौधे की और घास जल्दी आती है, तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि आप 20 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रख के आप मूंगफली की बिजाई कर सकते हैं। पहले आपने भूमि शोधन कर लिया है, फिर बीज शोधन कर लिया है, फिर आप लाइन से लाइन बुआई करेंगे। कोशिश करिए कि जो ऊंचे उठे हुए बेड हैं वो बनाएं ताकि अगर बरसात के समय जलभराव होगा तो जलभराव के समय आप लोगों का पानी ना उसमें भरे, क्योंकि मूंगफली को मिट्टी चाहिए, बलुई दोमट चाहिए और हल्के टेक्सचर वाली, बहुत अधिक भारी मिट्टी नहीं चाहिए ताकि मूंगफली का जो दाना बनता है वो छिलका है वो जमीन के नीचे बनता है, और ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके पार्टिकल्स में कॉम्पैक्टनेस कम हो तो उससे मूंगफली अच्छी फैल सके और अच्छा फुटाव ले सके और अच्छी ग्रोथ कर सके। इसलिए मूंगफली में रेतीली अगर मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी में भी हम घूर के साथ गोबर की खाद के साथ मिला के इसमें हम बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात हम आते हैं कि आपके बुआई का समय मैंने तरीका बता दिया कि बेड बनाने हैं आपको, बेड के ऊपर आप लोग चाहे तो मूंगफली वाली मशीन आती है बोने की या तो उस मशीन के माध्यम से या फिर खुरपी से जो ट्रेडिशनल विधि है किसान भाइयों की उसके माध्यम से भी आप इसमें बो सकते हैं। बुआई आपकी करने के तुरंत बाद आपको विशेषकर यह ध्यान रखना है कि अब हमारा टारगेट होता है बरसात की फसल है कि आप खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें किस विधि से बुआई करनी है, कैसे बुआई करनी है, खाद प्रबंधन कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं इस समय की बात करूं तो अगस्त का महीना चल रहा है और हमारे जो किसान भाई हैं जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मूंगफली की बुआई करते हैं, तो इस समय हमारे किसान भाई कौन कौन से कृषि कार्य अपनी जो मूंगफली की फसल है उसमें कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान उसमें रख सकते हैं?
0: किसान भाइयों, विशेष का ध्यान रखिए, इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, आपकी मूंगफली लगभग अगर आपने सही समय में बोई है तो 50 से 60 दिन की हो गई होगी, और कहीं अगर जल भराव है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। जो इस समय सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है, यदि आपके खेत में वाइट ग्रब या टर्माइट की समस्या है तो हम उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस या थायमेथॉक्सिन या फिप्रोनिल ग्रेन्यूल्स, फिप्रोनिल जो आप उसमें लगाते हैं

0: धान में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपके में व्हाइट ग्रब या टर्माइट या भीमक भीमक की समस्या आ रही है, तो यदि कोई भुनका मकड़ी इन सब चीजों के जो उड़ने वाले जो कीट हैं उनकी आपको समस्या आ रही है, तो आप इसमें इमिडा क्लोरोपेट लगा सकते हैं और क्यूनोला फोस लगा सकते हैं। और यदि आपके में कोई भी चलने वाली सूंडी कीड़ा या फिर कोई भी रस चूसने वाली कोई सूंडी है, तो उसके लिए आप इसमें क्यूनोला फोस या फिर इमामेक्टिन किसी भी कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो सबसे ज्यादा देखने को आया है, जो इस समय बीमारी मूंगफली में आ रही है, वो टिक्का डिसीज एक आती है। टिक्का डिसीज जो है वो एक फंगस है। टिक्का डिसीज के लिए एजॉक्सी और टीपीएम का आप जो है कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि और कोई गलन आ रही है, तो उसके लिए कोई बेहतर फंजीसाइड जैसे हेक्साकोनाजोल, कोई अच्छा फंजीसाइड आप इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे जो किसान भाई हैं इस समय जो रोग है उनका नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी फसल है मूंगफली, वो 50 से 60 दिन की हो गई है, अगर हमारी फसलों में इस समय खरपतवार उगाते हैं, तो हमारे किसान भाई किस विधि से उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं या खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं?
0: हाँ, खरपतवार के लिए दो विधि है हमारे पास। एक तो बुआई के समय, जब हमारी बुआई होती है और जमने से पहले, तब हम लोग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कह सकते हैं, जो कि बुआई के 24 से 48 घंटे के भीतर हमको करना होता है इसका स्प्रे। इसमें हम मुख्य रूप से दो खरपतवार नाशी ले सकते हैं, जैसा पेंडीमेथलीन और फ्लूक्लोराडिन। इसके बाद दूसरा विधि है, हम 20 से 25 दिन बाद निराई कर सके, यदि किसान भाई संभव है तो उसकी निराई समय से पहले, फूल आने से पहले इसका निराई कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, जब चार पत्ती की अवस्था में मूंगफली हमारे पास पहुंच जाती है, दो से चार या तीन से चार पत्ती की अवस्था में, तो हमारे पास कुछ सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स इनके होते हैं, जैसे कि इमिडाथायपर 10% में आप लोग ले लीजिए। ये लगभग हमें 200 ml जो है, 200 लीटर पानी को हमें एक एकड़ में स्प्रे करना है। इसके बाद हम क्यूजिला फो पीथाइल भी ले सकते हैं। ये दोनों सेलेक्टिव हर्बिसाइड खरपतवार नाशी हैं, जो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो हमारे किसान भाई वो खरपतवार नियंत्रण जो रासायनिक क्रियाएं हैं रासायनिक विधियों से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बरसात का समय चल रहा है, जहां बारिश नहीं हुई है या कम बारिश हुई है, तो सिंचाई की कितनी आवश्यकता मूंगफली की फसल को पड़ती है? अगर सिंचाई की बात करें तो हमारे किसान भाई किन किन विधियों से सिंचाई कर सकते हैं और किन किन बातों का हमारे किसान भाई सिंचाई करते समय ध्यान रख सकते हैं?
0: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। जब हम इसे गर्मियों में करते हैं, जायद सीजन में, तब अमूमन इसको 3 पानी की आवश्यकता होती है। ये फसल 100 से 120 दिन की होती है, तो लगभग हमें 30 दिन के अंतराल पर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर विधि की मैं बात करता हूँ, तो इसको किसी भी विधि, अगर किसी के यहाँ ड्रिप लगा हुआ है तो ड्रिप से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि इसमें आपके पास फ्लडिंग इरिगेशन है, मतलब आप ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, तो बहुत हल्का चलता हुआ पानी आपको देना है, कि ध्यान रखें कि पानी का जलभराव वहां पे ना हो, उससे इसकी पैदावार में फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो हमारे पास विधि मौजूद है, जैसे स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और अपनी मूंगफली की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे फसल बढ़ती है, तो फसलों पर रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है और कुछ मुख्य रोग उसमें लग जाते हैं, तो मूंगफली की फसल में कौन कौन से मुख्य रोग लगते हैं, तो उनकी पहचान कैसे करें और उनका नियंत्रण किस प्रकार हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
0: मूंगफली में सबसे पहले जो मेन जो मुख्य रोग है, वो फंगस का कारक है। जो मूंगफली का क्षेत्रफल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हुआ, उसका कारण उकटा था। उकटा यानी कि फंगस। तो उकटा के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम भूमि शोधन पहले से ही कर सकते हैं। भूमि शोधन के बाद हम बीज का शोधन कर लें, उसके बाद भी उकटा आती है, तो उसमें एक तो उकटा में गलन आपको दिखाई देनी पड़ जाएगी, पहचान ये है। इसके बाद एक बीमारी इसमें आती है मूंगफली में, टिक्का डिसीज कहते हैं। उसमें जो है पत्तियों के ऊपर गोल गोल से लाल और ब्राउन से आपको स्पॉट पड़ जाएंगे, वो टिक्का डिसीज है। तो वो फंगस के कारण ही होती है। तो उस फंगस के कारण क्या है कि हम उसमें कोई भी एजॉक्सी या फिर ट्यूबिकिनोजोल का कोई भी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे हम उसपे कर सकते हैं। यदि नीचे से उसकी जड़ों के पास से, तने के पास से नीचे से गलन है, तो हम उसमें कोई भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा सकते हैं। यदि दीमक की वजह से या किसी सूंडी जो गिडार जो जमीन के नीचे होता है, तो उसमें अगर उनकी प्रकोप है, तो वहां पे हम उसमें कार्टअप कोई भी हम इंसेक्टिसाइड सूंडी नाशक उसमें लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे पास खेती है, तीन तरह के उसमें होते हैं, या तो मक्खी, भुनका, ग्रब जैसे कहते हैं गिडार, या टर्माइट, या फिर वो आपका दीमक है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कार्टअप या क्लोरपाइरीफॉस आप लगा सकते हैं। यदि उड़ने वाला एफिड है या कोई भुनका मकड़ी इन सब चीजों का प्रकोप है, तो आप इमिडा क्लोरोपिट लगा सकते हैं और क्यूनोला फोस करके एक दवाई नया रसायन आया है, उसे आप लगा सकते हैं। यदि इसमें कोई लीफ मतलब रेंगने वाली सूंडी या फिर पत्ती के ऊपर रस चूसने वाली कोई सूंडी है, तो आप वहां पे क्यूनोला फोस और इमामेक्टिन का स्प्रे या फिर किसी भी अच्छे रस चूसक कीटनाशी का स्प्रे आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो मूंगफली की फसल में रोग या कोई कीट लगते हैं, तो हमारे किसान भाई इन सब बातों को अपनाकर उसमें उपचार कर सकते हैं और अपनी फसल से लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मूंगफली की अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक तत्व उनकी आवश्यकता पड़ती है।

0: है, तो हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?
1: जी किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की आवश्यकता इसमें ना के बराबर कम होती है। सबसे अधिक आवश्यकता क्या है, 5 से 6 किलो इसमें आपने शुरुआत में बुआई के समय डीएपी या एनपीके आपने प्रति बीघा डाल दिया, सल्फर आप डाल दीजिए, उससे तेल जो निकलता है मूंगफली का उससे तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो किसान भाई कर सकते हैं, जब फूल निकलने लगता है तो आप उस टाइम पे नैनो डीएपी या फिर सागरिका का मिला के मिक्सचर या फिर एनपीके आप अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका स्प्रे कर दीजिए, ताकि फूल अच्छे से अधिक मात्रा में आए और जो है उसमें पैगिंग जो दाना नीचे पड़ना शुरू होता है वो भी आपका अधिक से अधिक हो सके। एक बहुत जरूरी बात जो किसान भाई विशेषकर ध्यान रखिए, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे और हमें करना है, क्योंकि मूंगफली का जो छिलका होता है वो कैल्शियम से बनता है, वो बढ़िया जो कैल्शियम जो है की मात्रा जब हम स्प्रे कर देंगे तो वो अच्छा होगा, मजबूत होगा और अच्छे से मूंगफली आपकी बेहतर क्वालिटी की होगी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसका स्प्रे भी अपनी मूंगफली की फसल में करना है। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हमारे जो किसान भाई हैं कुछ ऐसा करते हैं कि जो जिप्सम का प्रयोग करते हैं मूंगफली में, तो डॉक्टर साहब मूंगफली की फसल में जिप्सम का क्या महत्व है और इसके कब और कितनी मात्रा में देना सही रहता है?
1: ओके, जिप्सम का प्रयोग हम मुख्य रूप से पहले ही बुआई के समय ही करते हैं, एक बोरी जो कृषि विभाग से आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बुआई के समय इसको कैल्शियम को मिट्टी में मिला के हमें इसका करना उचित रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो इसमें मिट्टी में मिलाकर हमारे जो किसान भाई जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं और इससे हमारी फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे जहाँ जहाँ लगातार बारिश होती है और उसके में जलभराव की स्थिति भी हमारे खेत में हो जाती है, तो उससे कैसे हमारे किसान भाई बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अधिक बारिश से या अधिक नमी से मूंगफली की फसल में रोग लग जाते हैं?
1: किसान भाइयों, अगर हम लोगों के यहाँ खेत में, पहले तो हमें खेत का अपना ये देखना है कि जहाँ ज्यादा जल भराव होता है या जो नीचे खेत है हमें वहां पे मूंगफली की खेती नहीं करनी, हमें इस कोशिश करनी है जो थोड़ा उठा हुआ खेत हो जहाँ पानी का निकास अच्छा हो उस खेत में हमें उसकी खेती करनी है, पानी तुरंत निकल जाए। बेहतर ये होता है कि इसमें चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें ये खेती नहीं होती है, इसमें बलुई दोमट मिट्टी में ही होती है, जहाँ पे मिट्टी के जो कणों का आपस में अट्रैक्शन होता है वो कम हो, ताकि मूंगफली का दाना नीचे अच्छे से फैल सके। दूसरा क्या है कि मैंने उसके लिए आपको बताया कि जैसे आलू की हम बुआई करते हैं बेड बना के, वैसे ही हमें प्रयास करना है कि इसमें आलू की बुआई की तरह ही मूंगफली की भी बुआई करें। बेड आप अपने सुविधा अनुसार बना लीजिए, लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यदि आप जो है 1 मीटर का बेड बना सकते हैं तो 4 लाइन आ जाएंगी, यदि आप उसमें कम का बेड बना सकते हैं तो आवश्यकता अनुसार आप 3 लाइन ले लीजिए, 4 लाइन ले लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आपका जब बारिश अधिक होगी तो नालियों के माध्यम से आपका पानी बाहर आ जाएगा, यदि आपको पानी लगाना हुआ तो नालियों के माध्यम से ही आप पानी लगाएंगे और मूंगफली को भी अपना जितना आवश्यकता अनुसार पानी मिल जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे किसान भाई जो बेड के माध्यम से मूंगफली लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मूंगफली की फसल इसमें फूल और फलियां बनने की अवस्था में किसान भाइयों को किन किन विशेष बातों को अगर ध्यान देना पड़ता है या सावधानियां बरतनी पड़ती है, उस बारे में जरा हमारे किसान भाई को बता दीजिए।
1: जब फूल बनना शुरू होता है तब हमें उस अवस्था में ध्यान रखना है कि फूल बनना जब शुरू हो तो उससे पहले खरपतवार नियंत्रण के जो भी कार्य हैं, चाहे निराई हो चाहे खरपतवार नाशिका स्प्रे हो, वो हमें कर लेना है। फूल जब बनना शुरू होगा तो हमें उसी टाइम पे एक तो आपको नैनो डीएपी या सागरिका अथवा एनपीके का कोई स्प्रे आप कर लेंगे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, दूसरा हमको कैल्शियम की जो है पूर्ति देनी है, यदि आप जिप्सम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है, नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे हम कर देंगे। बस ये ध्यान रखें जब फूल बनना शुरू हो जाता है उससे 5-7-10 दिन बाद पैगिंग होने लगती है, मतलब एक उसमें खिल्ला सा निकल के नीचे जमीन में जाता है, उस समय से पहले आपको सारी क्रियाएं कर लेनी है, उस समय खेत में डिस्टर्बेंस ना के बराबर करें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, जैसे खुदाई का समय क्या है, कैसे हमारे किसान भाई इसकी पहचान कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा और जानकारी हमारे किसान भाई को दे दीजिए।
1: खुदाई का समय मुख्य रूप से जो भी हमारे पास प्रजातियां हैं मूंगफली की 100 से 120-125 दिन तक की होने वाली हैं, तो यदि 100 दिन पूरे हो जाते हैं, पहले तो आप ही को पता होगा कि आपको जल्दी पकने वाली कम अवधि वाली प्रजाति है या फिर आपकी देर पकने वाली प्रजाति है, उसके अनुसार आप 100 दिन जैसे पूरे हो जाते हैं तो आप उसे एक मूंगफली को उखाड़ के देखें। पहले तो सबसे बड़ी पहचान क्या, जब आप मूंगफली को छील के देखेंगे तो उसका छिक्कल जो है दाने को छोड़ने लगे और दाना हल्का सा लाल पड़ने लगे, तब आप समझिए कि आप ये हार्वेस्टिंग के लिए या उसके खुदाई के लिए सही उपयोग समय आ गया है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब हमारा जो दाना है वो लाल पड़ जाए तब हमें उसकी खुदाई करनी है। डॉक्टर साहब, जैसे खुदाई के समय मिट्टी में अधिक नमी होने से या अधिक सूखापन होने से जो हमारी मूंगफली की फसल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: हाँ, मूंगफली में अगर खुदाई के समय अधिक नमी बनी रहेगी तो ये ध्यान रखें कि नमी इसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी होगी तो आपको उखाड़ने में और आपके मूंगफली का नुकसान होने में दिक्कत आएगी। अगर हल्का सा सूखेपन पे है तो कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी नमी होनी चाहिए कि आपका पौधा आराम से हाथ में उखड़ जाए। और उखड़ने के बाद ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मूंगफली में अधिक नमी है मिट्टी में तो मूंगफली तुरंत आप उठा लें, क्योंकि जैसे ही मूंगफली आप उखाड़ते हो और खेत में अगर एक दो दिन तीन दिन भी पड़ी रह गई तो मूंगफली फिर जमने लगती है, उससे उसकी क्वालिटी खराब होती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो अधिक नमी है तो उसमें अगर मूंगफली उखाड़ते हैं तो हमें तुरंत उठा लेनी चाहिए, जिससे जो मूंगफली में अधिक नमी है वो ना रहे। डॉक्टर साहब, जैसे मूंगफली की खुदाई करने के बाद सुखाने में और सुरक्षित भंडारण करने के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं?
1: पहले तो मूंगफली यदि आप मशीन से उखड़वा रहे हैं तो ध्यान रखिए सारा मूंगफली आप फड़ पे लाके सुखा लीजिए। आपको मूंगफली को उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद आप उसे सुखाएं हल्का सा। सुखाने के बाद आपको पौधे से मूंगफली अलग करनी पड़ती है या फिर आजकल मशीन आ गई है वो आपको मूंगफली मूंगफली निकाल देंगे। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि धूप में आप इसको मूंगफली को छिकाएं, और छिकाते समय आपका जब दाना बजने लगे तब आप समझिए कि प्रॉपर उसमें मॉइस्चर कम हो गया है। लगभग मॉइस्चर आपका 20-25% के बीच में रह जाएगा, अगर आप जांच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो देसी विधि उसकी यही है कि आपका मूंगफली का दाना हजबजने लगे जब आप मूंगफली को लाएंगे तब आप उसको भंडारण कर सकते हैं। भंडारण करने से पहले नमी को जरूर सुखा लें, नहीं तो मूंगफली आपकी काली पड़ जाएगी और उसमें फंगस लगेगी जिससे कि आपकी गुणवत्ता खराब होगी और आपको मार्केट में रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें जो नमी की मात्रा है उसे 20-25% रखना है, तब उसका सुरक्षित भंडारण हमें करना है। डॉक्टर साहब, जैसे इस समय बरसात का समय चल रहा है और अगस्त का महीना है, तो मूंगफली की फसल में इस समय किसान भाई कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए?
1: मूंगफली की फसल में मुख्य रूप से सही बीमारी का पहचान होनी बहुत आवश्यक है कि अगर पानी अधिक भर रहा है, पानी अधिक भर रहा है तो समझिए कि वो गलन है आपकी, फंगस आ रही है, तो हमें कोई फंजीसाइड देना है। किसान भाई समझते हैं कि कोई इसमें सुंडी आ रही है, कोई इसमें कीट है, उसकी दवाई लगाते रहते हैं। तो सही पहचान आपको सही या तो खुद ही किसान भाई कर लें या फिर किसी वैज्ञानिक से आप पूछ के सही दवाई का आप स्प्रे करें तो आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब चलते चलते और कोई विशेष बात इस समय मूंगफली उत्पादक किसान भाइयों को बताना चाहेंगे जो रह गई हो, जिससे हमारे किसान भाई लाभ ले सकें?
1: विशेष बात भाई किसान भाइयों को ध्यान रखना है, बहुत अधिक नाइट्रोजन की नहीं देना है, कोशिश करिए बेड पे ही बनाएं, बेड पे भी आप मूंगफली की बुआई करें, फंजीसाइड का स्प्रे टाइम से करें आप इस्तेमाल कर लें ताकि आगे आपको फसल के दौरान तो आपको दिक्कत ना आए, और कैल्शियम का स्प्रे जरूर कर लें ताकि आपको जो उसका छिलका है वो अच्छा बने।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे किसान भाई इस जानकारी को सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाई ने सुनी यो बातचीत, और बातचीत का विषय था मूंगफली में समसामयिक कार्य, और इस संबंध में जानकारी देते थे डॉक्टर सौरभ दुबे। तो देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हमारे किसान भाई को, बताई कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कैसे अपनी मूंगफली में कार्य कर सकते हैं, किन किन बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और भैया क्या क्या उन्हें सावधानी बरतनी है जिससे भैया हमारे किसान भाई मूँगफली से अच्छा उत्पादन ले सकें। और भैया देखो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान भाई अगर अमल में लाते हैं तो भैया जो हमारी मूंगफली की फसल है उससे अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई को मिल जाएगा। और भैया देखो जब हमारे किसान भाई को उत्पादन अच्छा होगा तो भैया लाभ भी मिलेगा, और भैया देखो जब बात लाभ की तो भैया एक लाभ हम भी कमा लें। और भैया ले लें मैं एक छोटा सा ब्रेक और सुन लें मैं कुछ जरूरी संदेश।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
4: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
3: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
4: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
3: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी हमारे किसान भाई ने सुने कुछ जरूरी संदेश। और देखो भैया, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भैया बात करते हैं कुछ खेती किसानी की। देखो भैया, हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती करते हैं और भैया लाभ भी कमाते हैं, पर भैया इतना लाभ नहीं ले पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे जो किसान भाई हैं भैया, वो ज़्यादा लागत जो रासायनिक जो उर्वरक है उन पर लगा देते हैं, और भैया हद से ज़्यादा रासायनिक खादों का वो उपयोग अपने खेतों में करते हैं। और रासायनिक उर्वरक जैसे भैया यूरिया है, DAP है, भैया MOP है, NPK है, भैया फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भैया इनका जो असंतुलित या भैया अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने पर भैया मिट्टी हो, जल हो या पर्यावरण हो, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इस वजह बहुत सारे नुकसान हमारे किसान भाइयों को होते हैं। एक तो भैया मिट्टी की जो उर्वरता उसमें कमी आती है, क्योंकि भैया रासायनिक उर्वरकों का लंबे समय तक अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भैया मिट्टी के भैया भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण प्रभावित होते हैं, और मिट्टी में भैया पोषक तत्वों का असंतुलन जो वो पैदा हो जाता है। दूसरा भैया, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव उस पर जो प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक मिट्टी में पाए जाने वाले भैया लाभकारी जैसे सूक्ष्म जीव उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इससे जैविक पदार्थों के अपघटन और पोषक तत्वों के प्राकृतिक चक्र पर जो असर पड़ता है। इसके साथ साथ भैया जो मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ उर्वरक जो हों भैया लगातार प्रयोग से जो मिट्टी का PH मान है उसे प्रभावित करते हैं, जिससे उसके उत्पादन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और भैया साथ साथ देखो, जल प्रदूषण पर भी इसकी समस्या पैदा होती है, क्योंकि भैया जल प्रदूषण की समस्या इससे क्या होता है कि जो हमारे नाइट्रोजन है या फास्फोरस है ये युक्त उर्वरक जो है भैया अधिक मात्रा में बारिश या भैया सिंचाई के पानी के साथ बहकर जैसे तालाब हो या नदियाँ हैं और भैया भूजल में पहुँच जाती है। इससे भैया जल प्रदूषण बढ़ता है और भैया इसके साथ साथ मिट्टी में भी प्रभावित होती है, और भैया भूजल वो जो हमारा भूमि का जल है वो प्रभावित होता है, और उसकी जो गुणवत्ता है भैया वो भी इससे प्रभावित होती है। तो इन बातों का भैया हमें ध्यान रखना है। और भैया देखो, इसके साथ साथ जो हमारे जो पर्यावरण है इस पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भैया ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन बढ़ सकता है, जिससे भैया जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। तो हमें अत्यधिक जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है। और भैया जब फसल की गुणवत्ता की बात आती है तो भैया इसका जो सीधा सीधा असर है अत्यधिक उपयोग से फसल की गुणवत्ता पर भी सीधा सीधा पड़ता है। आवश्यकता से अधिक उर्वरक देने पर पौधे में भैया कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है, जिससे भैया जो फसल की गुणवत्ता है या रोग कीट प्रतिरोधक क्षमता है या भैया उत्पादन क्षमता है वो भी प्रभावित हो जाती है। तो भैया इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। एक तो भैया हम जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी, और जांच के आधार पर उर्वरकों का सही प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा। और भैया देखो, हमारे जो किसान भाई अगर मिट्टी की जांच कराएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में है और कौन सा पोषक तत्व हमें किस मात्रा में देना है। तो इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं। और भैया इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई फसल की आवश्यकता के अनुसार संतुलित मात्रा में NPK की जो मात्रा है हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ भैया हमें एक काम और करना है, जैसे भैया जो रासायनिक उर्वरक जो खाद हैं उन पर अपनी निर्भरता कम करनी है, हमें लौटना है जैविक खेती की ओर। उसके लिए भैया हमें जो जैविक खाद या कंपोस्ट खाद या भैया घरी खाद है उसका उपयोग करना है, जिससे क्या होगा जो हमारी फसल है वो रासायनिक मुक्त होगी और हमारी जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहेगी, और फसल की जो उत्पादन क्षमता वो भी बढ़ेगी, और मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता वो भी सुधरेगी। और भैया देखो, उर्वरकों का सही समय पर और सही विधि पर अगर हमारे किसान भाई सही से उपयोग करेंगे तो वो भी भैया फायदेमंद रहेगा। और भैया इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, हमें भैया एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन भी हमारे किसान भाई को अपनाना है, और भैया देखो एक बात और हो कि हम जो हमारे किसान भाई नाइट्रोजन को ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उसको हमारी जो मिट्टी है वो भी बंजर हो जाती है, तो उसे भी हमें हद से ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। उसके लिए भैया हमारे किसान भाई एक साथ ना देखो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांट कर अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे भैया हमारे किसान भाई को लाभ मिलेगा। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि रासायनिक उर्वरक जो है वो स्वयं हानिकारक नहीं है। अगर हमारे किसान भाई उसका असंतुलित प्रयोग या अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो हमारी मिट्टी को नुकसानदायक देते हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं भैया वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए और भैया मिट्टी की जो सेहत हो उसे बचाना चाहिए और भैया अपने साथ साथ अपने पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। भैया पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो खेती बाड़ी अच्छी होगी और खेती बाड़ी जब अच्छी होगी तो भैया हमें लाभ भी मिलेगा और भैया जब लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन करेगा गीत संगीत का। तो भैया चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं प्यारी सी रागनी।

ओ घनाथ ने अलग जगह के। अभी हमारे किसान भाइयों ने भुवनेश्वर की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी। और देखो भैया, हमारे किसान भाइयों को मनोरंजन भी हो गया होगा और भैया जो थकान है वो भी मिट गई होगी। और भैया देखो, अब बात कर ले मौसम की, क्योंकि भैया मौसम की चिट्ठी हम हमारे हाथ में इस पढ़ ले मो जो हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भैया गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तो हमारे जो किसान भाई हैं मौसम को देख कर अपने कृषि कार्य कर सकते हैं। देखो अगर बात करो घड़ी की, तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने किसान भाई को अपना पता जरूर बता दें। मैं हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2466763 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों, इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.46 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता, नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या नया संवाद। वार्ताकार हैं डॉक्टर शुभा माहेश्वरी। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: साहित्य चिरस्थाई है। प्रत्येक युग और देश, प्रत्येक समाज और मनुष्य, चाहे वह किसी भी अवस्था का हो, साहित्य सदा ही आत्ममंथन का और संवेदनाओं की सरिता में डूबते उतराते रहने का विषय रहा है। जैसा वैश्विक परिदृश्य व देशीय वातावरण होता है, वैसी ही मनुष्य की मानसिकता और उसके अनुरूप उसकी जीवनचर्या होती है। अपनी चिंताओं, अपने प्रश्नों, अपने तनावों के बीच साहित्य की खोज कर वह अपनी उन संवेदनाओं को ढूंढता है जो उसे सुकून दे सकें। इसीलिए साहित्य हर युग में जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना रहता है। विषय के अनुसार पहले यह समझना आवश्यक है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का विभाजन कैसे किया जाए। अमेरिकी समाजशास्त्रियों विलियम स्ट्रॉस और नील होव की एक पुस्तक जेनरेशंस द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकास फ्यूचर इस विभाजन का आधार बनी। इस विभाजन को मीडिया और शोध संस्थानों की वैश्विक स्वीकृति मिली। इस पुस्तक में बताया गया कि प्रत्येक 15-20 वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां तथा तकनीक बदलती हैं, जिसका प्रभाव नई पीढ़ी पर पड़ने से उसका अलग स्वभाव बन जाता है। इस आधार पर सन 1946 से 1964 तक जन्मी पीढ़ी को बेबी बूमर्स, सन 65 से 1980 तक जन्मी पीढ़ी को जेन एक्स, 1981 से 1996 तक की पीढ़ी को जेन वाई या मिलेनियल्स कहा गया। सन 1997 से 2000 तक जन्मी पीढ़ी को जेन जी के नाम से पुकारा गया। इसके आधार पर बेबी बूमर्स और जेन एक्स पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी तथा जेन वाई या मिलेनियल्स और जेन जी को नई पीढ़ी माना जा सकता है। पुरानी पीढ़ी के लेखन के मुख्य विषय रहे स्त्री स्वतंत्रता, दलित विमर्श, भ्रष्ट व्यवस्था का विरोध, आजादी के बाद का मोहभंग, समाज के बनते मिटते सपने, ग्रामों से पलायन, महानगरों का एकाकी जीवन, पारिवारिक विघटन, निजता का संकट आदि। इन विषयों पर हिंदी साहित्य में डॉक्टर नामवर सिंह, अनामिका, लीलाधर मंडलोई, राजेंद्र यादव, मंगलेश डबराल, अखिलेश, बद्री नारायण, असत जैदी जैसे महान कृतिकारों ने कालजयी साहित्य रचा तथा वैसे ही समृद्ध पाठकों ने भी उसे आत्मसात कर स्वयं को और समाज को परिष्कृत किया। आर्थिक उदारीकरण के कारण 1991 के बाद पढ़ने लिखने की आदत बदल गई। मोबाइल क्रांति ने नई पीढ़ी के जीवन मूल्य परिवर्तित कर दिए, पीढ़ियों में परस्पर दूरी पैदा कर दी। नई पीढ़ी को पढ़ती लिखती नहीं, जिम्मेदार नहीं, आत्म केंद्रित है, श्रम से बसती है, उदास है, अनमनी है, अनुशासनहीन है आदि आदि शब्दों से आरोपित किया जाने लगा। लेकिन यदि हम नई पीढ़ी के मन में गहरे से उतरें तो पाएंगे कि उस पर गढ़े गए विचार बेमानी हैं। नई पीढ़ी हर युग की तरह ऊर्जा का स्रोत है, ऊष्मा का भंडार है। उसे प्रश्नों के जाल ने, अधीरता ने आकंठ व्याकुल बनाया हुआ है। उसे चीना नहीं जा रहा क्योंकि पुस्तकालयों में उसकी उपस्थिति कम हो गई है। उसके हाथ में पुस्तकें, ग्रंथ दिखाई नहीं देते। इनके स्थान पर दिखाई देता है मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट। पहले साहित्य पढ़ने का मापदंड था मोटी किताबें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, लेकिन आज 6 इंच के स्क्रीन पर नई पीढ़ी के समक्ष साहित्य का पूरा संसार खुला है। वस्तुतः आज की पीढ़ी बहुत पढ़ लिख रही है, बहुत गहराई से, बारीकी से चीजों को समझ रही है। वह पुरानी पीढ़ी के विचारों से असहमति रखती है, लेकिन उसके अपने रंगीन सपने हैं, नई कल्पनाएं हैं। साहित्य के प्रति उसका रुझान बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। आज का युवक अपनी आकुलताओं को शांत करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए साहित्य का ही सहारा लेता है। साहित्य उसके सम्मुख खड़ी अनेक संभावनाओं में से कुछ संभावनाओं को प्रस्तुत कर उसे दिशा तय करने में सहायता करता है। नई पीढ़ी के लिए पुस्तक सदा अपने पास रखने की वस्तु नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए वह उपकरण है जो उसके किसी प्रश्न का उत्तर पाने की दिशा तय करे या उसके मन विवर में छिपी कलौंस को थोड़ी सी किरण दे सके। सच यह है कि साहित्य की उपलब्धता के रूपों में एक बड़ा परिवर्तन है। ई बुक, ऑडियो बुक, ब्लॉग, वेब पत्रिकाएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्टोरी टेलिंग आदि ने पुस्तक का स्थान ले लिया है। यह साहित्य से दूरी नहीं, नया संवाद है। नई पीढ़ी ने स्वतंत्रता पूर्व के साहित्य से लेकर प्रेमवध, पंकज बिष्ट, बद्री नारायण तक को पढ़ रखा है। स्लैम पोएट्री, वेब सीरीज की पटकथाएं, ग्राफिक नॉवेल साहित्य की उपलब्धता का ही विस्तार हैं। आज उसका अध्ययन कक्ष स्क्रीन, कीबोर्ड, स्क्रॉल बार से सजा है। नई पीढ़ी लैंडलाइन, ट्रंक कॉल, टाइपराइटर, रेडियो नहीं जानती। वाईफाई, चैट जीपीटी, ग्रो, परप्लेक्सिटी, जेमनी आदि जैसे टूल्स उसकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। साहित्य कंटेंट कहीं चित्रात्मक हैं, तो कहीं सस्वर, कहीं साउंड इफेक्ट के साथ उपस्थित हैं। इसीलिए उसे उपन्यास पुस्तक के रूप में पढ़ना नहीं भाता। यह समय द्रुत गति का है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पुरानी पीढ़ी पुस्तकों का चयन समीक्षा के आधार पर करती थी, जबकि नई पीढ़ी रील, रिकमेंडेशन या रिसर्च देखकर करती है। जहां तक विषय की बात है तो नई पीढ़ी पारंपरिक विषयों के साथ साथ तकनीक, वैश्वीकरण, पर्यावरण, सामाजिक न्याय के साथ ही रिश्तों के तनाव, प्रेम, कैरियर का दबाव, संघर्षों, अनुभवों और सपनों को साहित्य के माध्यम से खुलकर बेबाक लिख रही है। इसे हम साहित्य का लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को सोशल मीडिया पर लिखने, बोलने और पढ़ने का अवसर मिल गया है। अनेक युवा ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लिखकर साहित्य की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। एक कवित्री हैं सविता पाटिल, उनकी कुछ पंक्तियां देखिए। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदा नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले हमारे आज कितने विश्रब्द हैं, एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निःशब्द हैं। सरल सहज बोलचाल की भाषा है, प्रभावी निजी और ईमानदार भाषा है। उसके वाक्य छोटे, स्पष्ट, अर्थ से पूर्ण, हृदय को सीधे छूने वाले हैं। उसकी दृष्टि में भाषा ऐसी हो जो शीघ्र ही पठनीय हो, समझकर जल्दी अपनाई जाने वाली हो। नई पीढ़ी को यह सुविधा मिली है कि एक ही विषय पर पढ़ने के अनेक स्रोत हैं। ट्विटर, एक्स के थ्रेड से इंस्टा स्लाइड्स तक, सबस्टैक न्यूज़लेटर से मीडियम एक्सेस तक, टेलीग्राम, पीडीएफ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आदि ऐसी अनेक दिशाएं हैं। इस सबके मध्य एक चिंता यह है कि बिना उद्देश्य के मात्र आनंद के लिए साहित्य पढ़ना कम हो गया है। स्क्रॉल संस्कृति से एकाग्रता और गांभीर्य कम हो गया है। परिवारों में भी पढ़ने की परंपरा कम हो रही है। लेकिन इसका समाधान साहित्य से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि साहित्य और नई पीढ़ी के मध्य सेतु बनाना है। इस दृष्टि से डिजिटल पुस्तकालय प्रथम चरण पर है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग विश्व प्रसिद्ध और पुरानी पुस्तकों का ऑनलाइन फ्री खजाना है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय में न्यूनतम दरों पर या निःशुल्क ई बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। आवश्यकता है कि साहित्य और सोशल मीडिया का परस्पर संबंध अधिक से अधिक हो, प्रौद्योगिकी का लाभ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने में हो। यदि साहित्य समय के साथ चले और नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, तो यही नया संवाद साहित्य को और सुदृढ़, संपन्न तथा बहुआयामी बना सकता है।
0: नई पीढ़ी और साहित्य, दूरी या नया संवाद। डॉक्टर शुभा माहेश्वरी की ये वार्ता अभी आपने सुनी और इसके साथ ही विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, संध्या के 6:55 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जमीर से। गीत के बोल हैं साहिल लुधियानवी के और धुन तैयार की है सपन चक्रवर्ती ने।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना था किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जमीर से। और अब कार्यक्रम के अगले गीत में किशोर कुमार का साथ दिया है आशा भोसले ने फिल्म दीवार में। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार आर डी बर्मन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

प्रोफेसर प्यारीलाल, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में, और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात 8:30 बजे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 9:30 बजे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत में 7:32 पर आप सुनेंगे प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे 8:00 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 बजे। 10:00 बजे होगा कार्यक्रम भूले बिसरे।

0: गीत और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण, आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कल रात 10 बजे। कल रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कवि गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी होंगे राजीव उपाध्याय, सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और नरेंद्र वर्मा। संचालन करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 6:50 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन हेतु मुख्य शस्य क्रियाएं, इस विषय पर डॉक्टर रितेश शर्मा से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी इस पखवाड़े किसान भाई क्या करें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय होगा जिगर के सामान्य रोग और उपचार। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे सुभाष चंद्र और साथियों के स्वर में रागनी। महिला जगत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर बहनें सुनेंगी मनु श्वेता का काव्य पाठ। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर भगवती प्रसाद पोखरियाल की स्वर में गढ़वाली लोकगीत सुनवाए जाएंगे। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर क्रम होगा दिल से दिल तक। सुगम संगीत में 7:32 पर मोहम्मद जफर की आवाज में चंद गजलें पेश की जाएंगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 हो चुके हैं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
2: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
3: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है CKYC ID।
3: CKYC मतलब
4: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के CEO समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर, 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूद

0: में बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी विशेष गाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों को अधिक सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे रेलवे जोन के अधिकारी भी लगातार राज्य के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान से संबंधित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण और अनवरत सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पूरे एक महीने तक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा समर्पण और कर्तव्य पथ पर लगातार 25 साल अनवरत सेवा के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर पूरे एक माह तक ये सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें रक्तदान और युवाओं को और जो निसहाय लोग हैं उनकी सबकी मदद करके हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाएंगे।
0: प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के अलावा 100 मीटर के दायरे में 8 मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए कई जेसीबी मशीनें लगाकर तलाश और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 2 सितंबर को मणि रामदास छावनी के चार धाम में आयोजित होगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दो चरणों में प्रस्तावित इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव और दो रिक्त सदस्य पदों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार दो बदमाश आज सुबह शामली में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। इन दोनों शूटरों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने बताया कि चार लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
4: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री-प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं।
0: इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से अब तक 1635 बाढ़ चौकियां और 254 बाढ़ शरणालय स्थापित किए जा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है।
5: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
6: जो ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित, जिसको हम लोग कहते हैं वरुणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहां पर बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। उसमें एनडीआरएफ जो हमारी बाढ़ राहत पीएसी है उसका डिप्लॉयमेंट और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो ये एरिया हमारा दशा समेत घाट और आसपास का, नावों का संचालन लगातार बंद किया गया है। साथ साथ में जो गंगा आरती है उसके स्थल में भी परिवर्तन किया गया है।
0: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: आपकी चाय।
8: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
9: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
8: कैसे?
9: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
8: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
9: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
8: ना भाई ना।
10: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला भजन।

श्रोताओं, आप सुन रही हैं प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। प्रतिभा सिंह के ही आवाज में आइए सुनते हैं एक और भजन।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन, और इसी आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

श्रोताओं, अभी आपने प्रतिभा सिंह के स्वर में ये भजन सुना और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम ये सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने प्रतिभा सिंह के स्वर में भजन सुने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब वक्त है गीत संगीत का। जी हाँ श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या और कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। राजमहल फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में एक और गीत, प्यार का बंधन फिल्म से। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के और धुन तैयार की है रवि ने।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन है चित्रगुप्त का।

प्रेम गीत। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना जगजीत सिंह की आवाज में, और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की योगा लवर्सों में फिल्म पूजा के फूल से ये गीत। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आखिरी खत से। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद, क्षमा कीजिए, महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म दहलीज से। गीत के बोल हैं हसन कमाल के और धुन तैयार की है रवि ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में दहलीज फिल्म से, और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में,

गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी फिल्म से आइए सुनते हैं एक और गीत, एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। और आइए एक और गीत सुनते हैं गीता रॉय और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना गीता रॉय और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म गूंज उठी शहनाई सी। और इसके साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
4: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत ने विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
6: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
8: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
8: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
8: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances.
9: During his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Narendra Modi today met the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Armenia. During these bilateral meetings, the leaders discussed economic and trade partnerships, enhancing cultural cooperation and growing people-to-people contacts between the two countries. Earlier today, Prime Minister Modi had a warm interaction with members of the Indian community in Bishkek. He appreciated their energy, enthusiasm, and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and the Kyrgyz Republic. Mr. Modi also paid floral tribute at the Mahatma Gandhi Memorial in Bishkek. The Prime Minister will address the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit tomorrow. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
8: This was our correspondent covering Prime Minister Modi's Kyrgyz Republic visit. Mr. Modi reached Bishkek yesterday after concluding his successful visit to Uzbekistan. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of the current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurav Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that the government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of the current financial year a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievements reflect the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said this while addressing the media in New Delhi today.
10: There is a significant level of confidence among the global semiconductor industry stakeholders that India is definitely the right place for making major investments in the coming decades. And that is clearly demonstrated by the number of units which have been approved in the Semicon 1.0. That is further demonstrated in the speed at which from the date of approval to date of groundbreaking to the date of commercial production. That speed is something which people have really noted.
8: The India Electronics and Semiconductor Association has hailed the official notification of Semicon 2.0, building upon the success of the Semicon India program. In a statement, the association said the comprehensive approach can significantly deepen India's semiconductor capabilities, attract large-scale investments, create high-value employment and strengthen India's position as a trusted global semiconductor partner. This is Akashwani giving you the news.
7: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashwani News.
8: Bihar and Jharkhand today signed an MOU on sharing of Son River water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. He said the agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people. The draft electoral roll for Delhi was published today after the completion of the Special Intensive Revision SIR. According to the draft electoral roll, out of 1,45,10,299 electors, a total of 97,53,577 voters have submitted the enumeration forms. The electoral body stated that 47,56,722 enumeration forms could not be collected due to absent, shifted, dead or duplicate electors found during house-to-house visit
11: by booth-level officers. Citizens can download the draft rule from ceodelhi.gov.in. Odisha remains under the grip of intense monsoon activity with heavy to extremely heavy rain reported from several parts of the state. We have more from our correspondent.
12: The India Meteorological Department has issued a red warning for Sundargarh and Keonsar and an orange warning for Jharsuguda, Bargarh, Sambalpur, Deogarh, Angul and Mayurbhanj for today. The red warning will continue for Sundargarh and Keonsar tomorrow, with orange warning remaining in force for the same six districts. The IMD says the well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal North Odisha coast is likely to move west-northwestwards across North Odisha and Gangetic West Bengal during the next 24 hours. Extremely heavy rain is forecast at isolated places today and very heavy rain tomorrow. Meanwhile, the flood situation continues to disrupt normal life in parts of Jajpur, Kendrapada and Bhadrak. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
11: The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall over Chhattisgarh tomorrow. Relief and rescue operations continue in Nepal following devastating flash floods, but security personnel are facing shortages of specialized equipment, body bags, ropes and helicopters. The floods triggered by a suspected ice and rock avalanche near the Nepal-Tibet border last week swept through the Bhotikoshi River corridor, destroying homes, roads and bridges and damaging hydropower projects. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority says the death toll has risen to 939, while more than 4,200 people remain untraceable. Nearly 21,000 personnel from the Nepal Army, Nepal Police and Armed Police Force are engaged in rescue operations across the affected areas. The Red Cross estimates that more than 90,000 people have been affected. Meanwhile, India has deployed specialized rescue and forensic teams to assist Nepal. A 19-member Indian forensic team is helping with the DNA analysis to identify victims, while an Indian tunnel rescue team is assisting in operations at hydropower sites. Indian experts are also helping locate hundreds of workers believed to be trapped or missing at hydropower projects. This is Akashwani. You are listening to the news at 9.
7: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
11: The benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. We have a report.
13: The Sensex

0: today. Singham Mayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. India will play their next match against host Uzbekistan on Thursday. Lionel Messi today announced his retirement from international football, bringing an end to a 20-year Argentina career that included a World Cup triumph, 2 Copa America titles and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision has been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. The 39-year-old revealed the decision in a statement posted on his official Instagram account, confirming that he would no longer wear the Argentina jersey after one of the most celebrated international careers in football history. Messi said the decision had been painful, particularly because of the emotional bond he has shared with the national team and Argentina supporters throughout his career. He led his country to the World Cup title in 2022 after years of near misses, and also helped Argentina win 2 Copa America crowns. In the US Open, 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic suffered a first-round exit in the men's singles for the first time. Djokovic went down against Argentina's Mariano Novoa in New York this morning. He had also not lost his opening match at any Grand Slam since 2006 Australian Open. In the women's singles, Venus Williams was also knocked out in the first round of her 26th US Open appearance. In table tennis, India's Ankur Banerjee has won his maiden men's title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denny Kozul of Slovenia 3-1 in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republic and Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई. वजीर आजम ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है. वजीर आजम मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आजादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया. वजीर आजम ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की. वजीर आजम कल एससीओ समिट से खिताब करेंगे. भारत की मजमुई घरेलू पैदावार जीडीपी आलमी उथल पुथल के बावजूद रवा माली साल की पहली सैमाही में 7.8% तक पहुंच गई. बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं. नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है. राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं. और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की. बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तआवुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई. मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.

0: यूक्रेन तनाजे के बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकफ का इयादा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। बहरी जहाजों की आमोदरफ्त और तिजारत की आजादी के तहफ्फुज़ पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि शहरियों और सिविल बुनियादी ढांचे बशमूल तिजारती जहाजों और मल्लाहों को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वजीर आजम मोदी और जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सदूर जापारोव ने दोतरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आजम मोदी और आर्मेनिया के उनके हममनसब निकोल पेशिनियान ने दिफा, मईशत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। आज वस्ती एशियाई मुल्क के अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम मोदी ने बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अराकीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर भारत के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 4 वफूद मौजूद थे। जमहूरिया किर्गिस्तान के कल अपने दौरे के आखिरी दिन वजीर आजम मोदी शंघाई ताउन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी कल उज्बेकिस्तान का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद बिश्केक पहुंचे थे। भारत की असल जीडीपी में माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता साल इसी सहमाही में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। भारतीय मईशत ने नासाजगार हालात के बावजूद तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा है। नॉमिनल जीडीपी में भी मौजूदा माली साल की पहली सहमाही में 10.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। आदाद शुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत ने आज मौजूदा माली साल में अप्रैल से जून तक की पहली सहमाही में जीडीपी के तखमीने जारी किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और बड़ा कारनामा करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये कामयाबी तेल की कीमतों के दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के अवाम की इज्तिमाई ताकत और मजबूती की अक्कासी करती है। इस दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस मजबूत कारकर्दगी का सहरा मुल्क के अवाम और उनकी सख्त मेहनत को जाता है। वजीर खजाना ने कहा कि एनडीए सरकार की जानिब से की गई इस्लाहात और मईशत के मौसर और पायदार इंतजाम के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। खिदमात की पैदावार के इशारे आईएसपी के तहत जून 2026 के दौरान 19 में से 18 जैली शोबों में सालाना बुनियाद पर इजाफा दर्ज किया गया है। 8 शोबों में 2 हिंसे की शरह नमू दर्ज की गई है। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत की जानिब से जारी करदा जैली शोबा जाती आरजी आईएसपी आदाद शुमार के मुताबिक रियल स्टेट का शोबा 24.7% की शरह नमू के साथ सबसे आगे रहा, जबकि खुर्दा कारोबार में 18% का इजाफा हुआ। थोक कारोबार में 15.1%, انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی۔ اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی۔ آئی ایس پی ایک مقررہ بنیادی سال کے مقابلے میں باضابطہ خدمات کے شعبے کی پیداوار کے حجم میں مختصر مدت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت نے کہا کہ اعداد و شمار کے معیار اور دائرہ کار کا جائزہ لینے کے لیے خدمات کی پیداوار کے ماہانہ اشاریے آزمائشی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا اہم جز ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ آج دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی نفٹ کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ محترمہ مرمو نے طلبہ سے کہا کہ وہ ملک کے مالامال ثقافتی ورثے اور اقدار سے جڑے رہتے ہوئے عالمی نقطۂ نظر کو اپنائیں۔ فیشن انڈسٹری میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4000 طلبہ میں لگ بھگ 85% خواتین ہیں۔
2: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا کھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانے کو اوپر سمبھو بنائے۔ آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے۔ اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ بوشک ہو لیکن آپ کی جڑے اپنے مٹی کی وشیشتا اور جیون مولیہ سے جڑے۔ اس طرح آپ نہ کیول سکسیسفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکشن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے۔
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت میں فیشن اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی سطح پر اپنی موجودگی بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ محترمہ مرمو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ملک کے روایتی ٹیکسٹائل ورثے کو جدید بازاروں اور نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے اپنے علم، مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آج ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو فروغ دینے کے لیے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے خرچ سے سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس قدم سے آنے والے برسوں میں بھارت عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر صنعت میں تقریباً 10% حصے داری حاصل کر سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں اس کا رول مزید بڑھ سکتا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں ویفرز کی تیاری سے لے کر چپ کی پیداوار تک مضبوطی سے شامل کرنے پر مرکوز ہے۔ سیمیکون انڈیا پروگرام 2.0 کے تمام 6 اہم بنیادی اجزاء کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد جناب ویشنو نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے شراکت داروں میں اس بات کا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے بھارت ایک موزوں اور پسندیدہ مقام ہے۔ اس دوران انڈیا الیکٹرانکس اینڈ سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن آئی ای ایس اے نے آج سیمیکون 2.0 کے باضابطہ نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سیمیکون انڈیا پروگرام کی کامیابی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جامع حکمت عملی بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو نمایاں طور پر مضبوط اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ قدر والی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کر سکتی ہے۔ آئی ای ایس اے کے صدر اشوک چندک نے کہا کہ بھارت اب اپنی ساکھ قائم کرنے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر حقیقی صلاحیت پیدا کرنے کی جانب گامزن ہے اور مذکورہ پالیسی کا تسلسل اس سفر کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کارروائی میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلوں، रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे गिरने के सबब आया। सैलाब ने भोटेकाशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया है। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और मुतासिरों की शनाख्त में मदद के लिए खसूसी टीमें तैनात की हैं। 19 रुकनी भारतीय फॉरेंसिक टीम ने कल काठमांडू में इंसानी लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट में मदद फराहम करने का काम शुरू कर दिया। लायनल मेसी ने आज बैनुल अख्वामी फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए उनका 20 साल तवील करियर इख्तिताम पजीर हुआ। उनके करियर में वर्ल्ड कप की जीत, 2 मरतबा कोपा अमेरिका का खिताब और अपने मुल्क के लिए रिकॉर्ड 207 मैच शामिल हैं। मेसी ने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद से उनके जहन में था, लेकिन वालिद की वफात ने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि अब लगभग रिटायर होने का वक्त आ गया है। 39 साल मेसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक बयान में इस फैसले का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि फुटबॉल की तारीख से सबसे मशहूर बैनुल अक्वामी करियर्स में से एक के बाद वो अब अर्जेंटीना की जर्सी नहीं पहनेंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाज रानी की आज़ादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनिया रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म कल SCO समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP आलमी उथल पुथल के बावजूद रवा माली साल की पहली सैमाही में 7.8% तक पहुँच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक मुआहदे पर पहुंच गए हैं। और नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। नंबर हैं 0112331041 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ
2: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को तो पैसा मिलता है, तो बैंक में पैसा निकालने से क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी तरह से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को जरूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपये का शायद रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूं ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है
0: जी। शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, PM स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
1: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इससे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट वे खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लैंडर्स हैं, उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
0: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60-66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी,
1: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
4: नमस्कार जीतेंद्र विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी इसमें बीसी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मैं मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस पे कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं इसका, इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इसको थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे।
1: हाँ, ये जो चल रहा है अब ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए है, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे।
0: जी, तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी. कहिए चौधरी साहब, क्या है
5: जमीन है बात?
0: जी जी कहिए सवाल.
5: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है.
0: आपका
5: आम पब्लिक के लिए
0: जी तो लगता है संपर्क कट गया है. और आपसे हम खैर एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है. लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है. और ये जो स्कीम्स हैं खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं फिनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा. इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती. हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
0: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं. एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से. और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है?
6: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश. सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा.
0: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे. जी
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि तो ट्रांजेक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं. और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहां का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं. तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं.
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में? क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए.
3: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है. तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. ये एआई के मॉडल है डिजिटल इनपुट प्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो QR कोड से UPI से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही AI एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है. ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को. यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे API बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
0: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से है लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
7: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
0: सर
7: मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
0: जी जरूर।
8: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप RBI के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निवारण करा सकते हैं।
0: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का यह समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग #AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
3: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
3: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
3: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेन होते हुए भी उनके लिए इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है, और इस चीज को कि किसके अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज संभव होगा।
0: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है एआईआई के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
9: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
9: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
8: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
8: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
0: जी। देखिए अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
3: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और ने सब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
0: जी,
3: जो
0: जी।
3: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
0: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
8: धन्यवाद
0: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।
10: नमस्कार,
11: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है,
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं और पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिनकी धुनों में हम कहीं खो से जाते हैं, जिनके अल्फाज हमारे दिलों की गहराइयों तक उतरते हैं। इन्हीं एहसास के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लाल बंगला फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को आवाज दी है मुकेश ने। गीत के बोल इंडिवर के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। कहते हैं चांद रात की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी किसी की याद में गुजरी रात चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांद आसमान में रहकर भी कहाँ जान पाता है कि किसी के दिल में कितनी हलचल है, कितनी तड़प है और कितनी मोहब्बत छुपी है। चांद से पूछो कभी रात की तन्हाई क्या है, चांद से पूछो कभी रात की तन्हाई क्या है, किसी की याद में बीती हुई अंगड़ाई क्या है। वो तो आसमान में चमकता रहा सारी रात, उसे क्या मालूम कि मोहब्बत की गहराई क्या है।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में फिल्म लाल बंगला से। कार्यक्रम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लाजवंती से। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और धुन तैयार की है एसटी बर्मन ने। साथियों, कभी कभी किसी के आने की खबर कानों तक नहीं पहुंचती, बस दिल की धड़कनें अचानक कुछ कहने लगती हैं। हवा का हर झोंका किसी की याद बन जाता है और मन के किसी कोने में एक मीठी सी हलचल जन्म लेती है। प्यार भी कितना खूबसूरत एहसास है, न कोई दस्तक न कोई आवाज़, फिर भी दिल कह उठता है कि कोई आया है।

शतों कभी कोई चेहरा हमारी नज़रों में इस तरह से बस जाता है कि उसे पहचानने के लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होती। उसकी एक झलक दिल की धड़कनों को तेज़ कर देती है और उसकी मुस्कान दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर देती है। ऐसी ही खूबसूरत से एहसास को बयां करता हुआ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जहाँ मोहब्बत शब्दों से नहीं बल्कि नज़रों और दिल की धड़कनों से महसूस होती है।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में फिल्म आहा से। और आइए अब सुनते हैं भाई भाई फिल्म में गीता दत्त की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन। श्रोताओं, जब दिल में कोई अनकही चाहत जन्म लेती है तो मन बार बार उसी से पूछता है, आखिर मेरे दिल में है क्या। कभी दिल की बात जुबां तक नहीं आती, कभी दिल की बात जुबां तक नहीं आती, कभी खामोश धड़कन भी बहुत कुछ कह जाती है। प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब दिल खुद अपने आप से सवाल करता है।

श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथियों, कहते हैं कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वे अपने साथ चांदनी की नरमी, नदी की रवानी और मोहब्बत की कहानी लेकर आती हैं। नदी का किनारा हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो और साथ हो कोई दिल के बेहद करीब, तो फिर हर लम्हा एक खूबसूरत गीत बन जाता है। ऐसी ही रुमानी रात, खूबसूरत मौसम और प्यार भरे एहसास को आइए महसूस करते हैं इस प्यारे से गीत में। ये रात सुहानी है, चांद भी कुछ कहता है। ये रात सुहानी है, चांद भी कुछ कहता है। नदी की लहरों में कोई सपना बहता है। जब साथ हो कोई अपना तो हर पल खास लगता है। खामोशियों में भी फिर प्यार का एहसास जगता है।

दिल्ली का ठग। अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। शुतो कुछ गीत, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। वो एहसास कराते हैं उस अनकहे प्यार की खूबसूरत धड़कन का जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। दिल की बात जुबां तक आए ये जरूरी तो नहीं, दिल की बात जुबां तक आए ये जरूरी तो नहीं, प्यार हर बार शब्दों में समाए ये जरूरी तो नहीं। कभी आंखें ही कह देती हैं दिल का हाल, हर एहसास को आवाज मिले ये जरूरी तो नहीं।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मोहब्बत जिंदगी है और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है श्रोताओं के पत्रों और एसएमएस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम जानते हैं आपको इंतज़ार है अपनी फरमाइशों के गीतों का और शामिल होने का कार्यक्रम में, और उतनी ही बेसब्री से हमें इंतज़ार है आपके मैसेजेस का। जी हाँ साथियों, मैसेज कीजिए और हमारा नंबर है 9457078288। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की लता मंगेशकर और मुकेश के गाए गीत के साथ। फिल्म का नाम है मिलन। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम का ये पहला गीत जो हमने लिया था फिल्म मिलन से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे नगीना से अनिल विनोचा, शमसी शामी विनोचा, अक्षय विनोचा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा, कानिक अरोड़ा। ये इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश की थी मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर ने, मोहल्ला हलवाइयां, शेरकोट, जिला बिजनौर से। ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम जुझेला, थाना शिवाला कला, बिजनौर से। राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से ये फरमाइश की है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से सुनना चाहते थे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। इसी गीत के लिए हमें अनुरोध किया था भूषण खेरा फाजिलका पंजाब से, खेड़ा परिवार, भूषण खेरा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी ट्विंसी वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक। ये एक और मैसेज हमें मिला है स्वर्ण सिंह, गांव दौलेवाला, जिला मोगा, पंजाब से। वणिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आइए देखते हैं हमें फरमाइश हमारे किन श्रोताओं ने की है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। ये फरमाइश है योग नागर बुढ़ाला पंजाब से, नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन और प्रेम लता मेहता। रिंग ने छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश की है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश की है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। ये एक और साथी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहाँ।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पतिता सी। सुनने की फरमाइश की थी पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे मंसूरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शरीक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और डूडी परिवार। ये फरमाइश हमें की है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा ने। एक और फरमाइश हमें मिली है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, हिरामण शेंडे, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि। ये फरमाइश है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता लिपि और दीपाली गोप। भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान और सादिक अली खान। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है इन सभी श्रोताओं की नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये फरमाइश है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान की। ये एक और फरमाइश है सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान। ये फरमाइश की है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर। झरझर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। ये हमारे एक और साथी हैं गंज डुंडवारा से शमशुल, कमर राहीफ, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ों में फिल्म ससुराल का ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ससुराल से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोता भी सुनना चाहते थे। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, ये आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, कुंदरकी से मोहम्मद मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मौजम मुस्तफ़ा गौसिया, ये फरमाइश है। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, मोहल्ला दरबारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊजी आलोक अग्रवाल। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म संघर्ष से सुनना चाहते हैं। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान, ये फरमाइश की है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और शमशुल यासीन, ये फरमाइश हमें मिली है। आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान, राघव चौहान, ये फरमाइश की है हमें। विलेज और पोस्ट राहु नंगला से ये एक और फरमाइश हमें अभी अभी मिली है साथियों। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, ये फरमाइश है। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू की ये फरमाइश आई है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा की। और इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संघर्ष के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजे अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
3: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization. In Uttar Pradesh, at least 11 people, including two children, were killed and five others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. The firecracker manufacturing unit was reportedly being operated from a house situated in agricultural fields. President Draupadi Murmu has expressed grief over the loss of lives in the accident that occurred in Kaushambi. In a social media post, she conveyed condolences to the families of those who lost their lives in the unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to a mishap at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, Mr. Modi extended his condolences to those who have lost their loved ones. The Prime Minister also prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent today. Singamayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. India will play their next match against host Uzbekistan on Thursday. In table tennis, India's Ankur Bhattacharya has won his maiden men's single title at the WTT FIDE Olomouc tournament in Czech, Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denny Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।